तो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने बदनों पर बहिष्ट के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मतलूब से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई।

بسم الله الرحمن الرحيم.

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: We'll be back after this short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101F.

are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above. आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 Radio Pakistan. कौन की आवाज? You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: sono io e te, beh.
1: This is FM 101.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुनते रहिए एफएम 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: This is FM 101।
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: सुनते रहिए FM 101।
4: I love FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: किसी भी किस्म की ज्यादती, जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हुकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
4: This is FM 101.
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
4: This is FM 101.
7: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
8: हमसे है रोशन ये जहां,
9: हमसे है

0: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: This is FM 101.
1: तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं. 13 जून अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: सुनते रहिए FM 101. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.1.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
6: हमसे है रोशन ये जहां,
7: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: I love
2: FM 101. 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
3: This is FM
2: 101. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया.
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101.
5: देयर्स म्यूजिक And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। खत्म होने वाले माली साल 2025-26 का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम 4 अरब डॉलर से तजावज कर गया, जो 2020 के बाद नुमायां तरक्की की वाज़े अलामत है। गैर मकबूल मोदी हुकूमत को नौजवान नस्ल की आवाज़ को दबाने की अपनी जारहाना कोशिशों पर आलमी सतह पर जिल्लत व रुसवाई का सामना है। और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान फुटबॉल टीम को डायमंड जुबली बैन अल-अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद दी है।
1: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान। This is FM 101.
1: I love FM 101.
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: हेलो हाँ सर वेयर आर यू कितनी देर से
1: ऑन द वे यार बस आधा घंटा दे
0: चल बेटा जल्दी कर

This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।
1: सर्वे के अहम नुकात और खदोखाल पेश करें। वजीर खजाना के कलमात के बाद सवाल और जवाब की नशिस्त होगी। हाल में हमारे स्टाफ के अरकान मौजूद हैं, आप अपनी नशिस्तों पर रहें और रोविंग में। हमने वजीर खजाना और उनकी टीम से खास तौर पर दरख्वास्त की है कि वो आज ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब दें, इसलिए तमाम दोस्त खातर जमा रखें। इंशाल्लाह सवाल के ख्वाहिशमंद तमाम दोस्तों को मौका मिलेगा।
2: बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इब्तदाई कलमात मैं पेश करना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट बेस, जो हकायक हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, और इसकी एक समरी भी है जो हम इंशाल्लाह आपको आपको देंगे। तो सबसे पहले आप सबका तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्नॉलेज माई कैबिनेट कॉलीग्स हु आर हियर एंड द सीनियर गवर्नमेंट कॉलीग्स जो आज यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इनकी एक और कमिटमेंट है 3 बजे, तो ये इनको थोड़ी देर के बाद जाना होगा, लेकिन होपफुली बिफोर वी कंक्लूड ये यहाँ होंगे। देखिए, ये जो सर्वे है ये एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन ये कहानी भी बयान करता है पिछले गुज़श्ता साल की इन टर्म्स ऑफ रिजिलियंस, जो डिसिप्लिन शो किया गया और जो रिन्यूड कॉन्फिडेंस है, और इस सारे सिलसिले में मैं थोड़ी सी आपके सामने गुज़श्ता रखूँगा। देखिए, व्हेन वी एंटर्ड दिस ईयर जुलाई में, जब हम ने ये माली साल शुरू किया, तो सबसे पहले तो एक ट्रेड अनसर्टेंटी थी, और वो जो ट्रेड अनसर्टेंटी है दैट वाज ऑन अकाउंट ऑफ द टैरिफ डिस्कशन, के टैरिफ्स, दुनिया भर के जो टैरिफ्स हैं वो उसको कैसे डील किया जाएगा। और हमने जुलाई के आखिर तक एक ऐसी जगह हम पहुंच गए थे कि वी कुड गेट इनटू ए कम्पेटिटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आवर एक्सपोर्ट्स, स्पेशली टू द यूएस। उसके बाद फिर हमने सैलाब देखा जो अगस्त सितंबर में आया, और फिर अक्टूबर में रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट हुई, और फिर उसके बाद मार्च से हमने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देखा। तो ये तीन वो आई वुड से एग्जोजिनस फैक्टर्स हैं जो जब इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए थे पिछले साल, द टैरिफ अनसर्टेंटी वॉज देयर, बट द अदर टू फैक्टर्स वर नॉट इन द पिक्चर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन जो सारे चैलेंजेस थे, इन्होंने पाकिस्तान की रेजिलियंस का इम्तहान लिया, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हम उस इम्तहान पे पूरी तरह और सही तरीके से हम उसके साथ नमर्द आजमा भी हुए, और हमने जो एक आगे ट्रेजेक्ट्री लेके जानी थी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, हम उस जर्नी पे कायम और दायम रहे। अच्छा, इसी सिलसिले में जो माली साल 2026 में जीडीपी ग्रोथ, वो ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, 3.7% रही, और इसमें मैं अभी जिक्र करूंगा कि व्हाई वी थिंक एंड व्हाई वी बिलीव। क्यों भाई, क्या हो रहा है? तो उसमें ये जो ब्रॉड बेस्ड इकॉनमी की बात है, तो उसमें ये कैसे हम इसको आगे लेकर चले, बिकॉज इसमें सिर्फ हजम नहीं बढ़ा लेकिन वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की भी बात है। अब ये उस तनाजर में है कि जो मैंने अभी कुछ फैक्टर्स बताए कि ना सिर्फ ये हमारे मुल्क को बल्कि इस खत्ते को बल्कि सारी दुनिया को उसने अफेक्ट किया, और उसी की वजह से यह है कि 26 में जो ग्रोथ की, ग्लोबल ग्रोथ की जो रिकॉर्ड की गई थी 25 में, वो कम होकर 3.1% रह गई इन 26। अब हम अगर देखें इस तनाजर में जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का जो اور میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے. اور یہ تھوڑا سا کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا. آئی تھنک اس کو اپنی ہم نے مائنڈس کو ریفریش ضرور کرنا ہے کہ 23 میں یہ منفی 0.2% تھی, 24 میں یہ 2.6% رہی, 25 میں یہ 3.2% ہو گئی. اینڈ کوائٹ فرینکلی اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا جنوری یا فروری میں تو ہمارا یہ ایک پلاننگ کی طرف سے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے, فائنینس کی طرف سے ہمارا یہ بڑا ایک متفقہ ویو تھا کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ 4% سے ایکسیڈ کر جائے گی. لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ افیکٹ ہوئے. لیکن ہیونگ سیٹ دیٹ پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. فیکس آمدنی 1,901 ڈالر ہو گئی ہے جو گزشتہ سال 1,751 ڈالر تھی. اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں. اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی. اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس. اور میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے یا از دیٹ گڈ انف, تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا. لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی. اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے. لائف اسٹاک ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر جی ڈی پی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے. آپ خود اس سے بہت چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ, ٹیکسٹائلز, ویئرنگ اپیرل, پیٹرولیم پروڈکٹس, نان میٹیلک منرلز, آٹوموبیلز, بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں. سو اٹس ناٹ ون سنگل سیکٹر وچ از سورٹ آف لیڈنگ اور کنٹریبیوٹنگ ٹو دس 6.1% ٹرن اراؤنڈ ان لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. دس از براڈ بیسڈ. اور اس کا دوسری سائڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ تو سپلائی سائڈ ہوگی, ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوا. تو اس میں بھی ہمیں نمایاں ایئر آن ایئر گروتھ نظر آئی ہے. اس میں کچھ میں آپ کو مثالوں دوں گا کہ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ ہوا, فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا, پٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا, آٹوموبیلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اینڈ دس اگین ٹرانسلیٹس ان ٹو ویریس سیکٹرز اور ان کی جو ڈیمانڈ بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے جو اگین دا جو براڈ بیس گروتھ کی بات ہوتی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے بیکاز یہ مجموعی طور پہ کلوز ٹو 58% آف آر جی ڈی پی کا حصہ ہے. تو یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے جو ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. اس میں میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سروسز جس میں 7.52% کی گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے جو کہ वंस अगेन 4 साल की बुलंद तरीन सतह है, लेकिन इसकी जो बहुत एक अच्छी चीज़ है कि इसकी जो डिजिटल इकोनॉमी है इसमें इसका जो रोल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसमें डिजिटल इकोनॉमी में मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिलाल कियानी साहब उसको स्टीयर कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी को खुद लीडरशिप पोजीशन में इसको आगे लेकर जा रहे हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन पे आता हूँ, इसमें जो आप सबको इल्म है लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ कि फिस्कल डेफिसिट जो है 0.7% ऑफ GDP, लास्ट ईयर दिस वाज 2.6%, इसी तरह प्राइमरी सरप्लस में भी बढ़ावा आया है, और ख़ास तौर पे FBR के महसूलात की मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि चेयरमैन FBR यहाँ मौजूद हैं, जहाँ 10.1% इजाफा हुआ है, और माका पेमेंट्स जो हैं उसमें 23% कमी आई जिससे हमें इजाफी फिस्कल स्पेस हासिल हुआ है। अफरात ज़र की बात है कि इसमें पिछले 2 सालों में 32 कमी वाकई हुई है, लेकिन इसमें भी हमें ये देखना है कि कहाँ से हम शुरू हुए थे। ये जो आपको एक वन पेजर दिया जा रहा है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ पहुँचे हैं। 38% से शुरू होकर हम जहाँ भी इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी रेट 11.5% है। अभी मैंने थोड़ा फिस्कल साइड की बात की है, अब मैं थोड़ा सा एक्सटर्नल साइड पे भी बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आप सब जानते हैं कि द ट्विन स्ट्रक्चरल डेफिसिट दिस हैज़ बीन द रियल इशू फॉर पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। एक साइड पे हम सरप्लस शो कर चुके हैं जो फिस्कल साइड है, और उसमें डेफिसिट में कमी ला चुके हैं, और इसी तरह मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सटर्नल अकाउंट की भी बात करूँगा कि जुलाई से मार्च तक हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो $72 मिलियन रहा। इसमें वर्कर्स रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, और चूंकि बात हमेशा ये होती है कि जी रेमिटेंसेस आपकी जो पिछले महीने में भी 4.25 बिलियन डॉलर्स पे आई हैं, विच वंस अगेन इज़ अ रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो मैं हमेशा ये बात होती है जी रेमिटेंसेस एक्सपोर्ट्स, ये दिस इज नॉट एन एंड और डिस्कशन, दिस इज एन एंड डिस्कशन। एक्सपोर्ट्स भी हमने बढ़ानी है, जिस पे प्लानिंग मिनिस्टर उसको कहते हैं एक्सपोर्ट इमरजेंसी की बात करते हैं, और बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं, और उस पे भी मैं आऊँगा कि जो एक्सपोर्ट की बात होती है और उसमें जो जहाँ जहाँ इजाफा हुआ है उसकी भी मैं बात करूँगा। लेकिन रेमिटेंसेस में सिर्फ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए वेदर और जिन ममालिक के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, फिलीपींस इन साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब इनकी रेमिटेंसेस जो हैं आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल इकोनॉमी। तो ये बात ज़रूर हो सकती है कि उसकी परसेंटेज ऑफ GDP कितनी है, हमारी रिलायंस कितनी है, लेकिन रेमिटेंसेस आर एंड विल रिमेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आर एक्सटर्नल बैलेंसिंग पोजिशन एज वी मूव फॉरवर्ड, एंड देयरफॉर वी शुड रिमेन वेरी ग्रेटफुल टू आर पाकिस्तानी एम्बेसडर्स, हमारे भाई और बहनें जो बाहर हैं और जो हमें ये ज़रा मुबादला यहाँ भेज रहे हैं। और उसमें मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द रिमिटेंस मूव फॉरवर्ड, एंड देयरफॉर वी शुड रिमेन वेरी ग्रेटफुल टू आर पाकिस्तानी एम्बेसडर्स, हमारे भाई और बहनें जो बाहर हैं और जो हमें ये ज़रा मुबादला

जब से उसका इजरा हुआ है तो आम तौर पे ये 180 190 मिलियन डॉलर का आरडीए फ्लोज आते थे, मार्च तक यही फ्लोज रहे। उसके बाद अप्रैल में ये 322 मिलियन डॉलर पे गए और जहाँ तक मेरी इतला है मई में भी इंशाल्लाह ये 300 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। ये फ्लोज तो हैं ही इन्वेस्टमेंट लेड, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में चले जाएँ, हाउसिंग सेक्टर में चले जाएँ, स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएँ, तो ये तो वो फ्लोज हैं विच आर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेड फ्लोज। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का ताल्लुक है, मैं उसमें कुछ तो इकोनॉमिक सर्वे में है लेकिन थोड़ा सा मैं उसको अपडेट कर दूँ क्योंकि मई की फिगर्स इस वक्त मौजूद हैं और इसी माली साल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमारे डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट की बात हुई है कि ये जी एक्सपोर्ट्स में हमारी कमी आई है, तो उसमें दो मेन वजूहात हैं और उसमें से एक सेक्टर है विच इज़ सॉर्ट ऑफ लीडिंग दैट विच इज़ फूड। उसमें राइस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 1.1 बिलियन डॉलर से नीचे गई और शुगर विच वॉज ए वन ऑफ इवेंट, वी डोंट एक्सपोर्ट शुगर एज अ रेगुलर थिंग, वो 403 मिलियन। तो 1.5 बिलियन डॉलर की जो रिडक्शन हुई है वो फूड सेक्टर में हुई है। और अगर मैं उसको देखूं कि एक्सपोर्ट कहाँ बढ़ी है, क्योंकि बात होती है टेक्सटाइल्स की और टेक्सटाइल्स पे आप जो हमारा मेन स्टे है और इंशाल्लाह हम इसको और भी चाहते हैं कि इनकी एक्सपोर्ट्स और बढ़ें, ये मैं अब जुलाई से मई की बात कर रहा हूँ। गारमेंट्स वोवन, ये 5% इसमें इंक्रीज हुआ है। होम टेक्सटाइल्स, इसमें 3% इंक्रीज हुआ है। गारमेंट्स नेटेड 3% इंक्रीज हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जहाँ भी आप वैल्यू एडिशन करेंगे, जहाँ भी आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एवरी थिंग दैट इज बींग सेड, ये भी तो वही सेक्टर्स है ना, जहाँ बिजली भी है, जहाँ टैक्सेशन भी है, जहाँ इंटरेस्ट रेट्स भी हैं, ये भी वही चीज़ देख रहे हैं, उसके बावजूद ये अपनी एक्सपोर्ट को ग्रो कर रहे हैं। तो पीपल हैव टू रिव्यू एंड द इंडस्ट्री हैव टू रिव्यू देयर बिजनेस मॉडल्स एंड देयर प्रोडक्टिविटी डिस्कशन। ये हम 40-50 साल वाली जो डिस्कशन है उसमें हम नहीं जा सकते हैं। अब ये AI लेड एंड AI लेड प्रोडक्टिविटी मॉडल्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह स्पोर्ट्स गुड्स, अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है कि आज जो अभी फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वंस अगेन इज द पाकिस्तानी फुटबॉल विच इज देयर। देखिए, सारी दुनिया में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्पोर्ट्स गुड में, ये मैं अब जुलाई से मई तक की बात कर रहा हूँ, 18% हमारी ग्रोथ हुई है। सो दीज आर ऑल सेक्टर्स जो हम बात करते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स का क्या हुआ और कैसे हुआ, एंड दिस इज बिफोर वी गो टू द IT एक्सपोर्ट्स जो 3.8 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुकी हैं और इंशाल्लाह 4.5 बिलियन डॉलर की IT एक्सपोर्ट होगी। और उसमें देखिए, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो भाई और बहन, द यंग मैन एंड वेमेन, द फ्री लांसर एक्सपोर्ट इज नाउ टचिंग 900 मिलियन डॉलर्स, दे आर ऑलमोस्ट गोइंग टू क्रॉस 1 बिलियन डॉलर्स। अब इनको हमने, कल भी प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने जो जिक्र किया, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की सारी बात हुई, इफ़ वी अपस्किल एंड रीस्किल देम, यही बच्चे और बच्चियाँ जो आज 10 और 12 डॉलर पे कोडिंग कर रहे हैं, तो अगर हम इनको ब्लॉकचेन में और इसमें AI लेड इन चीज़ों पे हम इनको अपस्किल और रीस्किल कर दें, और लम्स में इस वक्त एक ब्लॉकचेन का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन चुका है, अगर हम इन कर दें, दे कैन स्टार्ट कोडिंग एट 50 to 250 डॉलर्स पर आवर। ये इनके लिए, बच्चे और बच्चियों के लिए भी ज़बरदस्त, एंड फॉर द कंट्री, कैन यू इमेजिन कि इफ़ दे आर कोडिंग एट दिस लेवल एंड इफ़ दे गो टू दैट डेल्टा, किस किस्म की इसमें इंक्रीज आ सकती है। बस ये मैं सिर्फ जिक्र करूँगा कि ये ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट की बात थी। इस वक्त 17.1 अरब डॉलर है हमारा जो रिज़र्व सिचुएशन है, और जैसे गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा है, हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह 18 बिलियन डॉलर हम टच करेंगे एंड ऑफ जून, विच विल टेक अस टू 3 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट कवर, विच इज़ एन इंटरनेशनली रिकग्नाइज स्टैंडर्ड, एंड दिस शुड देन अलाउ अस फॉर फर्दर अपग्रेड्स इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब मैं थोड़ा सा कैपिटल मार्केट्स की बात करना चाहूँगा। KSE इंडेक्स में तो उतार चढ़ाव रहता है और उसमें, लेकिन में भी उसमें भी इजाफा और रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, लेकिन आई लुक एट ऑलवेज द एक्टिविटी ड्राइवर्स।
मैं जब प्राइवेट सेक्टर में मैं कहता था कि एक्टिविटी ड्राइवर्स ठीक हैं,

0: This is not about the tier one retailers. वहाँ POS machine भी है, सारा उनका सिलसिला वही चलेगा जो है. और इसमें हमने जो खोखे वाले हैं, जो जो हैं रेडी चलाते हैं, उनको भी निकालना है. तो वी हैड टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. और इस वक्त आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, क्योंकि ये भी एक तनकीद आती है कि आपने वो भी स्कीम शुरू की, वो भी स्कीम शुरू की, वो भी नाकाम हुई, ये भी नाकाम हुई. 2016 से ये सिलसिला चल रहा है. तो अब एक चीज़ एक मुशावरत से और इस व्यू से आगे हम लेकर चले हैं कि हम इनको पहले फैसिलिटेशन देकर ये जी इनको दें जी सबको आप ये दें. तो अब वी आर टेकिंग अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. अच्छा जी, तो अब यूई वाला जो आपका सवाल है ना, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि इट्स नॉट कोई ऐसी चीज़ हो. जो मिनिस्टर ओवरसीज हैं, आप उनसे ज़रूर आप रابطہ कर लीजिए चौधरी सालिक साहब से, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट नंबर्स दे सकते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, कितने लोग गए, कितने लोग निकाले गए, कितने लोग वापस आ गए हैं. ये तो वो आपको बयान कर सकते हैं. ऑल आई कैन टेल यू कि मुझे इस वक्त ऐसा कोई एग्जोडस नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से भी और देखिए, मैं इसलिए भी ये कहता हूँ कि उस इकॉनमी ने आगे बढ़ना भी है, उस इकॉनमी ने आगे चलना भी है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट. एंड अ लॉट ऑफ आर डायस्पोरा आर एक्चुअली इन इसेंशियल सर्विसेज. तो ऐसी बात नहीं है कि वो कहें कि जी हमने कल इसेंशियल सर्विसेज जो है वो ख़त्म कर देनी है. लेकिन इसका जो जो अगर आपको फिर भी डाउट है, तो आई थिंक चौधरी सालिक साहब इज़ द बेस्ट पर्सन कि आप उनसे ज़रूर इस पर बात कर लीजिए. जी आगे चलिए जी.
1: इरशाद अंसारी एक्सप्रेस.
2: सर मेरा आपसे ना दो चीज़ें छोटी. एक तो सर आपने पिछली मरतबा जब यहीं पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपसे क्वेश्चन हुआ था, आपने कहा था कोई मुकदस गाय नहीं होगी, हर एक को टैक्स में अपनी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी. आपके पास टैक्स के फिगर हैं, आपने ग्रोथ का भी बताया, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, तो ये ज़रा काइंडली बता दीजिएगा उसमें कंट्रीब्यूशन इन तबकात की, अशराफिया की, बड़े लोगों की कितनी है, ताकतवर लोगों की. दूसरा ये कि आपने दबंग ऑफिसर भी लगाया, क्रेडिबल भी है FBR में, सब कुछ है, लेकिन क्या वजह है कि आपने पूरी टीम के साथ हमें FBR में भी ब्रीफिंग दी थी कि CFOs को हम पकड़ेंगे, इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के हमने स्कैम पकड़ लिए हैं, सब कुछ किया. कौन सी ऐसी ताकतवर ताकत है कि जो आपसे भी बढ़ के है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इसको फोकस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता, उस तरह रिकवरी नहीं हो पाती. उसकी अगर डिटेल है तो बता दें. लास्ट सर जी, आपका ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये अलाइन नहीं करता कुछ चीज़ों में ज़मीनी हकायक से. इसमें आपने ये दिया हुआ है कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें इजाफा हुआ है, ठीक है. आपने रोजी पिक्चर पेश की है कि अगर ये रोजी पिक्चर है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी है, और इतनी रोजी पिक्चर है तो ऑन ग्राउंड जो लोगों की ज़िंदगी है उस पर इसका इम्पैक्ट उस तरह देखने में क्यों नहीं आता,
0: ठीक है जी. पहली बात तो है कि देखें, मैं दोबारा कहूँगा, इसलिए हमने वो आपको शीट भी दे दी है. उस शीट के ऊपर इन एडिशन टू द इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप कहीं भी कहें कि जो उसमें लिखा भी हुआ है कि ये हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स के साथ आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट दोज आर फैक्ट्स. तो अभी भी बात करके गए हैं प्लानिंग मिनिस्टर भी, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, ये आपका प्रेरोगेटिव है सर. ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपका व्यू हो सकता है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं जी. और दूसरा जो है, जो टैक्सेशन रिलेटेड, मैंने तो आपको दो बड़ी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दी हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें कैसे हेल्प किया है. और बाकी बजट के बाद अगर आप चाहते हैं ना कि चेयरमैन FBR आपके साथ बैठ जाएं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये आपको एक बहुत मुफसल देंगे. बिकॉज मैंने अभी कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया सीमेंट और जो शुगर है, वो ये आप पर बात आपके साथ बात करेंगे. टोबैको पे क्या एक्शन हुआ है, क्योंकि हो सकता है आपका इशारा वहां हो, और ये आपको डिटेल में बताएंगे कि वहाँ क्या एक्शन हुआ है. और इसी तरह जो हम बाकी सेक्टर्स हैं, बेवरेजेस हैं एक्सेट्रा,

0: फिक्र ना करें, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं ना, तो वी आर वेरी क्लियर कि कोई इसमें सीक्रेट काउज नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल बताएंगे और आपकी तसल्ली करवाएंगे। अगर फिर भी तसल्ली ना हुई, फिर हम आपको और फर्दर डिटेल्स देंगे, आप उसके बारे में फिक्र ना कीजिएगा।
1: करती है, आपने बताया कि कंपनीज जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं, लेकिन हमारे पास सरमायाकारी की फिगर कोई नहीं आई कि वो आया लॉन्ग टर्म, जिसको डायरेक्ट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो बड़ी है या कम हुई है। और दूसरा मेरा ये, आपने कहा कि 1 अरब के करीब पहुँच गए हैं फ्रीलांसर्स, उनकी पास कोई ना लेबर लॉज की ना डबल टैक्सेशन की कोई प्रोटेक्शन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो इसके कुछ आप कर रहे हैं?
2: सर देखिए, पहली बात तो ये है, वो एनुअल बजट स्टेटमेंट में आएगी, एनुअल बजट स्टेटमेंट में आती भी है, एनुअल बजट स्टेटमेंट में
3: ऑनलाइन सर अवेलेबल होगी, ऑनलाइन अवेलेबल, हम अपनी अवेलेबल होगी ऑनलाइन,
2: वेबसाइट पे भी डाल, वेबसाइट से
3: सब सर। ये मेरे साथ बैठे मौसम साहब, अर्ज है हुजूर के आएगी इंशाल्लाह,
4: ऑनलाइन लग गई, ऑनलाइन
2: वर्जन में
3: अपलोड हो
2: एक मिनट
3: कर, इसकी कंपाइलेशन में जवाब
2: दो, मैं बता देता हूं थोड़ी इसकी, ये
0: एक तो मेरी आपसे, एक मिनट देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको किसी ऑर्डर से लेकर चले, जो साथ बात हो रही है, आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ऑनलाइन होगी। इस क्वेश्चन के बाद आपके पास, मैं यहां बैठा हूं, मेरे भाई मैं यहां बैठा हूं, जब तक सबके आप जब तक नहीं थकते मैं भी नहीं थकता। मेरे भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, आप तसल्ली करें, आपके सवाल के जवाब दिए, हम आज आप फिक्र ना करें जी, आपका जी हाँ, बाजवा साहब के आपके दो सवाल थे, एक तो आपका देखें इन्वेस्टमेंट का सवाल है। देखिए मैंने कहा कि लोकल इन्वेस्टमेंट से बातचीत शुरू होगी, जहाँ तक FDI का ताल्लुक है वो तो नंबर्स आपके सामने हैं, मैंने तो नहीं उसको बात करनी, जिस पे बात आ रही है कि जी इतना ये कम हुआ है एक्सेट्रा, लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी जो कि लोकल इन्वेस्टमेंट जो है, मैंने अभी लोकल इन्वेस्टमेंट आपको प्राइवेटाइजेशन की बात की है, और मैंने अभी ये 5G स्पेक्ट्रम की बात की है, ये सारे वो नंबर्स हैं कि टोटल बेड PIA के लिए 2 कंसोर्शियम से $1.2 बिलियन की आई, जो ये 5G स्पेक्ट्रम है ये $500 मिलियन आया। तो ये अब लोकल इन्वेस्टमेंट आएगी, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल फॉलो, ये तो पहली बात है। दूसरा आपका सवाल क्या था जी? फ्रीलांसर्स का, देखिए फ्रीलांसर्स को हमने, ये मैं इनके सवाल से भी जोड़ रहा हूँ जिन्होंने पहले एम्प्लॉयमेंट की बात की है, इंसारी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है, गवर्नमेंट का काम है इकोसिस्टम देना। वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, फ्रीलांसर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये पॉपुलेशन बढ़ती रहे, इनको अपस्किल करते रहें, रीस्किल करते रहें, नंबर वन। नंबर टू, द प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री। हमें जो सारी बातें अभी की गई हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आपकी ये तकालीफ हैं, उनको हम कैसे कंट्री, गवर्नमेंट जो है वो ये इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अगर हमारा हमसाया मुल्क देख लें आप थोड़ी देर के लिए, बिकॉज इसमें बहुत बड़ी डिस्कशन होती है कि यहाँ वहाँ तो ग्रोथ 8% से ऊपर रही है ना, वहाँ क्या तनकीद हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ, बिकॉज जैसे जैसे आप कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप AI लेड डिस्कशन में जाएंगे, हमें अपने बच्चे और बच्चियों को उस साइड पे अपस्किल और रीस्किल करना है। ये जो आपके ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि जी इतना हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, दैट पैराडाइम इज गॉन, नहीं, मैं अपने बच्चे बच्चियों से भी बात करता हूँ और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेफ्यूज़ और नीसे से भी बात करता हूँ ये। और अभी आप अमेरिका में देखें, एंट्री लेवल जॉब्स आर गॉन। ये अभी इन्होंने माशाल्लाह क्लॉड की जो बात की है, एंट्री लेवल की तो ज़रूरत नहीं है ना, लॉ फर्म्स में ज़रूरत है, ना इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ज़रूरत है, ना कहीं और जगह ज़रूरत है। द ग्रेजुएट्स इन द US राइट नाउ आर एक्चुअली सफरिंग बिकॉज द एंट्री लेवल जॉब्स आर गॉन। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ना नए पैराडाइम के बारे में सोचना पड़ेगा एज वी गो फॉरवर्ड। और हमारा काम ये है, जो शाजा जो मिनिस्टर IT हैं इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, दैट्स वेयर वी नीड टू गो टू गेट द एम्प्लॉयमेंट गोइंग। सर आप पहले बात कर लें, आप नाराज़ हुए हैं, इनको दें ताकि नाराजगी तो हम कम करें।
5: बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब,
6: नहीं आपके पास भी आ रहा हूँ।
5: शकील अहमद, आइए जी सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप तीसरा बजट अपना पेश करने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा सर, ये बताएं कि आपका राइट है, आपने बड़ी रोजी पिक्चर पेश की है, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल जो नंबर्स हैं वो डाउन गए हैं। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई, $2 बिलियन से $1.4 बिलियन पे आ गई, जो अभी तक नंबर आए हैं, ठीक है जी। एक्सपोर्ट्स आपकी कोई 5.5-6% नीचे गई हैं।
6: अच्छा।
5: इसके अलावा आपका जो है वो बाकी आप देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं वो नीचे गए हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छी।
6: दो का बताएं ना, बाकी भी बता दें,
5: बाकी भी बता देते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि आप मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे फोकस जरूर करें, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा, जॉब्स नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं, आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना। और दूसरा ये बताइए कि आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे है, आपने पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, कितने लोगों को रोज़गार मिला, ये ज़रा बता दीजिएगा।
0: हो गया जी सर। अच्छा ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स का तो मैंने खुद जिक्र कर दिया और आपको बता दिया कि वहाँ कहाँ कहाँ और किस वजह से वो रिडक्शन हुई है, विच इज़ एसेंशली द फूड सेक्टर। मैंने ये भी आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो इसलिए एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यह कहना कि जी हम ये हैं वो हैं, तो फूड सेक्टर में मैंने आपको दो बड़ी क्लियर चीज़ें बताई कि $1.1 बिलियन टू डेट इज़ राइस और $400 मिलियन उसका शुगर का था, विच इज़ वन, सो दैट्स $1.5 बिलियन इन वन गो, ठीक है जी। और बाकी किसी जगह बड़ी होंगी तो ये अब तकरीबन उसी जगह पे आ रहा है ना, $30 बिलियन के करीब। तो इस वक्त मैं आपको ओवरऑल एक बता भी देता हूँ कि इस वक्त जो इस साल का जो करंट अकाउंट है, हम तकरीबन कहाँ उसको कंप्लीट करेंगे। तो तकरीबन $30 बिलियन, और आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें दीज आर टू फैक्टर्स, दिस इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड, दैट वॉज माई पॉइंट। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41-42 के करीब होंगी, हमारी जो इम्पोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेज हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। तो वी विल बी, और IT सर्विसेज में बिकॉज IT एक्सपोर्ट्स आर गोइंग टू इंशाल्लाह टच अराउंड $4.5 बिलियन, तो आई थिंक आर करंट अकाउंट इज़ गोइंग टू रिमेन वेल विद इन द टारगेटेड नंबर एंड वॉट वी हैव एडवाइज्ड। तो पहले 9 महीने में तो आपको पता है कि करंट अकाउंट सरप्लस में था, फिर अप्रैल में उसमें आया बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइसेस विच वेंट अप। तो एक तो आपकी ये बात है, दूसरा ये है कि आपकी बात, मैं एम्प्लॉयमेंट पे इसीलिए मैंने दोबारा उनके पास गया हूँ, उनकी बात दुरुस्त थी, आपने उसको दोहराया है कि जी एम्प्लॉयमेंट उस लिहाज से नहीं बढ़ी है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी किया तो अच्छी बात है, खुद जो अगर हम बात कर लें बजाय इसके कि आप तनकीद करें, हम कुछ चीज़ों को इदराक भी तो करना चाहिए ना, कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो मुनासिब जा रही हैं, ठीक सिम्प में जा रही हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी वांट टू वर्क ऑन। तो ही इज़ राइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही सेड, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट। अगर आप कोई चीज़ एक्नॉलेज ही ना करें तो फिर उसके ऊपर आप आगे कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मौका दे दें मेरे भाई, कल हम बजट पेश करेंगे, उसमें हमारी कोशिश होगी कि सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव मेड, कि हम इंडस्ट्री को और बाकी जगहों को हम कैसे एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन को हम कैसे हेल्प करें उसको बढ़ावा देने के लिए। तो परसों हमारी दोबारा बात हो जाएगी, हो सकता है आप कहें जी मैं फिर भी मुतमइन नहीं हूँ, दैट इज़ योर प्रेरोगेटिव एंड वी रिस्पेक्ट दैट जी। आप इनके मैं बात सुनना चाहता हूँ जी, सारे मेरे भाई सारे कोई नाराज ना हो। हाँ जी आप बताइए जी। ये थोड़ा सा जी इसको ऑन कर लीजिए
7: जी। असगर अली मुबारक सर, जिस तरह के आपने 25 نکات تقابلی جائزے میں پیش کیے ہیں، اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ عوام دوست بجٹ آئے گا انشاءاللہ، لیکن ہم آگے دیکھیں تو جی ڈی پی کے اندر جو تیزی آنے کے لیے، معاشی استحکام کے لیے کیا امراض جو ہیں وہ آگے پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟
6: دیکھیں وہ تو کل میں بجٹ میں بات کروں گا۔ دیکھیں میں
0: آپ سب لوگ جو ہیں یہ میں جی اب آخری پانچ منٹ ہیں، اگر اس میں کسی اور میں ہو۔ اچھا we have to go to the ladies. I will not go without talking to them. ایک منٹ سر، میں ان کا جواب تو دے دوں میں، مجھے اگر اجازت دے۔ آپ نے جو ابھی ذکر کیا، کل ذرا اس میں بجٹ آ لینے دیں، بیکاز آپ نے یہی بات کی نا گروتھ کی۔ دیکھیں ہمیں گروتھ، ہر ایک کو گروتھ چاہیے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے 4 سال پہلے بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا، گروتھ لانا بہت 3 مہینے میں 4 مہینے میں جو آپ گروتھ نمبر کہیں گے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یو ہیو ٹو پمپ لکوڈیٹی ان ٹو دا سسٹم، امپورٹ بڑھیں گی آپ کی، ابھی بھی جو آپ کی امپورٹ کچھ بڑھی ہیں، ایک تو پٹرولیم سے بڑھی ہیں، دوسرا جو آپ کا ایل ایس ایم کا انکریز ہوا ہے، کچھ امپورٹ تو ایسی ہیں جو ہو سکتے آپ کہیں سے کنزمپشن کے لیے ہے۔ تقریباً $1 بلین کی جو امپورٹ بڑھی ہے وہ مشینری کی وجہ سے بڑھی ہے، دیٹ از ایکچولی گڈ نیوز فار پاکستان، کیونکہ اگر کوئی مشینری منگوا رہا ہے ویدر از ٹیکسٹائل فار اینی ادر مینوفیکچرنگ، تو اس نے اس کو کہیں کھپت کرنا ہے، اس کے بارے میں اس نے سوچا ہوگا کہ میں نے ایکسپینڈ اپنی فیکٹری کو کیسے کرنا ہے، تو دیٹس گڈ نیوز۔ بٹ آر پرابلم از بیکاز وی ہیو بین امپورٹ ڈیپینڈنٹ فار سچ اے لانگ ٹائم، کہ جیسے یہ جاتا ہے اوپر، اف اٹ گیٹس آؤٹ آف کنٹرول، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم واپس گو ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ، جس پہ آپ سب پھر ناراض ہوتے ہیں کہ آپ واپس کیوں گئے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں، تاکہ یہ ہم بوم اینڈ بس سائیکل سے نکلیں۔ جی بتائیے جی۔
7: سر یہ کوئسچن ہے کہ آپ نے 2 سال سے رائٹ سائزنگ کے اوپر کام کیا ہے، تو رائٹ سائزنگ کے حوالے سے جو آپ نے ادارے بھی بند کیے ہیں، اس میں کتنی سیونگ ہوئی ہے 2 سالوں میں، اور اس سال کتنی ہوئی ہے؟ ایک تو یہ، دوسرا میرا راشد لنگڑیا سے سوال یہ ہے کہ جو
0: ابھی نا ہم اس کو مختصر کریں گے،
7: جی جی،
0: پھر ہم آپ کے پاس پرسوں حاضر ہونا ہے۔
7: ایگزمپشنز کے حوالے سے کہ کتنی ایگزمپشنز دی گئی سر؟
0: میں آپ کو میں ایکچولی بڑی مدمانہ طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی جا کے بجٹ کی تیاری کر دی ہے، تو اس لیے ہم نے پھر پرسوں حاضر ہونا ہے۔ میں پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ جی
8: سوالات سر ہم پرسوں لے لیں گے۔
6: آپ کا یہ تھا کہ ہم نے 3 اداروں کو جو بند کیا ہے، اس میں پاسکو ہے، اس میں یوٹیلیٹی سروسز کارپوریشن ہے، اس میں پی ڈبلیو ڈی ہے، یہ 3 ادارے بند ہوئے ہیں۔ اب اس میں میں آپ کو بڑا کھل کر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کی رائٹ سائزنگ میں وی ہیو پیڈ دا سیورنس پیکیجز جو سارا بنتا تھا۔ دیکھیے آپ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے، اٹس ناٹ اے کوشچن آف دا نمبر آف پیپل ہو ور امپلائڈ دیئر اینڈ دیئر سیلریز، دیٹ کوائٹ فرینکلی از اے ویری اسمال پورشن۔ اصل ایشو ہمارا یہ رہا ہے، اگر یوٹیلیٹی سروس کارپوریشن کو آپ اٹھا لیں، کہ جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں، سبسڈیز گو ان ٹو بلینس اینڈ دوز بلینس آر سائفنڈ آف ان کرپشن، دیٹ از دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم یہ کیوں بند کرتے جا رہے ہیں اور کیوں ہم ڈیجیٹل اس کو آگے لے جا رہے ہیں ڈسبرسمنٹ میں ایٹسیٹرا۔ دیکھیں جی ایک دو اور سوال۔ آپ بولتے ہی بولیے،
9: آواز آ رہی ہے؟
6: جی جی بتائیے۔
9: اوکے، میرا کوئسچن یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک نے مینشن کیا ہے کہ کس طرح سے جنوری میں ہماری گروتھ کب ہوئی بیکاز آف دا امپورٹڈ کرائسز آف ایران وار اور مڈل ایسٹ میں۔ ایبسولوٹ ٹرم میں کچھ آپ اندازہ ہے، کیونکہ اب آپ اینڈ آف دا ایئر ہیں، کہ اس وقت ہمیں جی ڈی پی کا کتنا لاس ہوا ہے؟ ایک اور چیز، لاسٹ چیز، ایٹ دا سیم ٹائم ریمیٹنسز کو آپ نے کور اسٹرینتھ لکھا ہے اپنے ڈاکیومنٹ میں،
6: سیکنڈ کا کیا ہے؟
9: ریمیٹنسز रेमिटेंसेस को आपने रेमिटेंसेस को कोर स्ट्रेंथ लिखा है, ठीक है, इन इस सिचुएशन में जबकि वॉर अभी तक जारी है और मिडिल ईस्ट हमारा होम बेस्ड है रेमिटेंसेस का, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले साल रेमिटेंसेस फिर बढ़ जाएंगी और आपको फायदा होगा?
0: नहीं, मैंने अगले साल की तो रेमिटेंस की कोई आपसे बात ही नहीं की है। मैंने तो इस साल की बात की है कि कहां वी एक्सपेक्ट टू क्लोज द रेमिटेंसेस व्हिच विल बी एनीवेयर बिटवीन 41 to 42 billion dollars। हो सकता है, अब जीडीपी का मैंने आपको बता दिया कि हम उसमें से, लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग दैट दिस द यू नो द लार्जेस्ट साइज ऑफ 450 billion dollars, तो आप इसमें देख लेंगी जो इस साल का हुजम है वो 450 billion dollars है जीडीपी का, विच इज द हाईएस्ट एवर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। आपका जी बहुत शुक्रिया जी।
10: वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तसादी सर्वे 2025-26 की रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। रोशन डिजिटल अकाउंट का मकसद ही सरमायाकारों की हौसला अफजाई करना था। मुल्क में शरह खानदगी 63% हो गई है। मुश्किल माशी असलाहत के मुस्बत नतायज आना शुरू हो गए हैं। हमें माजी से सबक सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करना है। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद जरूरी है। टेक्सटाइल के शोबे में भी बरामदात का कलीदी किरदार रहा है। एआई पर मबनी पैदावारी ढांचे की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब डॉलर से जायद हैं। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत तेजी से तरक्की की जानब गामजन है। रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 3 लाख तक पहुंच चुकी है। वजीर खजाना ने इक्तसादी सर्वे की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि 39,000 मजीद नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। मैन्युफैक्चरिंग के 22 में से 16 शोबों में बेहतरी आई है। माली खसारा कम होकर जीडीपी का 0.7% रह गया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ।
11: बुलंद बाला पहाड़ कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान का सब्जा ज़ारे शजर से समुंदर तक कराची से खुंजराब तक हर खत्ते की सकाफत का हुस्न बेमिसाल ये है मेरा आप सबका हम सबका पाकिस्तान।
12: तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफत और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिम। सीधी बात पीनेश सलीम के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज पर।

इल्जाम, बोहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांच को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से, हकायक की जर्ब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्कार।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: पैदाइश का इंदराज हो या सेहत सहूलियात, तालीम तक रसाई हो या बतौर वोटर इंदराज, जिंदगी के हर कदम पर कौमी शनाख्त आगे बढ़ने की ताकत। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मुतल्लिका इलेक्शन कमीशन या नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं।

0: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
1: हमसे है रोशन ये जहां,
2: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: 13 June, PC Hotel Lahore aaiye aur dein Al Shifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ticket aur table ki booking ke liye abhi hamari website visit karein. www.alshifaeye.org.
1: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: किण किण किण किण कैण किणा गण कैण किणा गण कि ग्रहा किण किण किण किण किण किण किण कैण किणा गण।

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: 13 जून, PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून, अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
4: सुनते रहिए FM 101।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
5: हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे। सोनी भैन भराओ, अस्सलाम वालेकुम। तुहाडी भैन ते इस प्रोग्राम दी मेज़बान साइमा हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे लेके तुहाडी खिदमत विच आ गई है। प्यारे सुनन वालियो, प्रोफेसर सुलेमान दा नाम कौन नहीं जानदा। ए साडे मुल्क ते बहुत ही मशहूर तबीब ने जिन्होंने कई बारी गोल्ड मेडल भी हासिल किया है ते दुनिया दे दूजे मुल्कां विचों भी इन्हां दीआं दवाइयां जिहड़ियां ने इस्तेमाल हो रहीआं ने। भैन भराओ, बेकरार नहीं होना, मैं तुहाडी मुलाकात सुलेमान साहब नाल करवावांगी। पहलां तुसीं लिखो साडा पता ते फोन नंबर ताकि तुसीं आप भी सुलेमान साहब नूं मिल सको।
6: सुलेमान, दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 042-377-27160, यानी 042-377-27160। मोबाइल नंबर है 03004142608, यानी 03004142608। ते साडा ईमेल एड्रेस है सुलेमान.दवाखाना एल

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक बारिश होने वाली है।

0: सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अल्शफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुनते रहिए FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन एक

싸게야 얼추 포기야 매닥 싸게야 얼추 포기야 매닥 싸게야 얼추 포기야.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101. 101.

सौ सलीमें थी हर एक हरफे जुनून से पहले, सौ सलीमें थी हर एक हरफे जुनून से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। उलझना, मेरा नाम ज़िया अंजुम है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हरफे जुनून। 12 बजे तक आपका और मेरा साथ रहने वाला है। बहुत सारे दोस्त शायद थोड़ा सा हैरान होंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे कि ये मैं कहाँ से आ गया। यकीनन बहुत सारे लिसनर्स आरजे डॉक्स का इंतज़ार कर रहे होंगे। आरजे डॉक्स अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से और आउट ऑफ सिटी होने की वजह से आज भी नहीं आ पाए। सो आज उनकी जगह मैं आया हूँ आपके लिए ये प्रोग्राम लेके। आरजे डॉक्स आज नहीं आ सकेंगे, उनकी जगह आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। सो अब जैसा भी टूटा फूटा, उन जैसा तो नहीं, वो तो बहुत कमाल का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जैसा भी हल्का फुल्का टूटा फूटा हम प्रोग्राम करेंगे उसको कबूल कर लीजिएगा। क्या ख्याल है? 12 बजे तक आपका और मेरा साथ रहने वाला है। बहुत सारी बातें गुफ्तगू आपके साथ यकीनन होने वाली है। दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं चाह रहा हूं कि आज भी आपके साथ करूं, और ना सिर्फ ये बातें यकतरफा हों कि सिर्फ मैं ही बोलूं और मैं ही बोलता चला जाऊं। मैं चाहूंगा कि ये जो राबता है, ये जो रब्त है, और इस रब्त का जो तसलसल रहे वो दो तरफा रहे, यक तरफा ना हो, टू वे कम्युनिकेशन रहे हमारा। कहते हैं कि यक तरफा मोहब्बतें बड़ी अजियत दे होती हैं। कभी कभी होता है ना कि हम यक तरफा ही एफर्ट्स कर रहे होते हैं, हम जिनके लिए कर रहे होते हैं वो जब आगे से रिस्पांस नहीं देते, वो जब आगे से बात नहीं करते, या अगर उनका रिस्पांस हम तक पहुंचे ना, तो एक अजीब सी बेचैनी भी होने लग जाती है कि यार मैं इतनी देर से, इतने अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जीज को इस जगह पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना आप सौंप रहा हूँ, मैं अपना आप इन लोगों को, इस शख्स को, इस जगह पे अपना सारा का सारा अपना आप देने से बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा, लेकिन क्या है कि आगे से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आ रहा। पता ही नहीं चल रहा कि उसको अच्छा लग रहा है कि उसको बुरा लग रहा है, या कुछ लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। कभी कभी यूँ होता है ना कि आप किसी जगह पे बहुत सारी एनर्जीज लगाते हो, बहुत सारी एफर्ट करते हो, अपना सारा अपना आप दे देते हो, और आखिर में अक्सर ये सुनने को मिलता है, हमने थोड़ी कहा था, तुमने खुद किया है अपनी मर्जी से, ना करते क्या जरूरत थी। होता है ना, ऐसे में इस कमबख्त दिल की जो हालत होती है, ओए होए होए होए होए। कभी कभी कुछ लोगों के सामने हम ऐसा बन चुके होते हैं, हम ऐसा अपना भरम बना लेते हैं कि हम उनके सामने टूट भी नहीं सकते। होता है ना, कैसे टूट जाएं इनके सामने, कि हमने तो अपने आप को बड़ा मजबूत करके दिखाया होता है उनके सामने। हमने वो बुत जो उनके सामने अपने आप का तराशा होता है, वो बड़ा पावरफुल होता है, वो बड़ा मजबूत होता है। हम नहीं चाहते कि हमें टूटता हुआ वो लोग देखें जिनके लिए हम मुसलसल खड़े थे, कायम थे। जिंदगी भी बड़ी अजीब है, बड़े इम्तिहान लेती है, ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे लोगों के सामने ऐसे ऐसे इम्तिहान लेती है। आप सोचते हैं कि यार मैं यहां पे
इस वक्त और इस तकाजे पे पूरा उतरूं, या फिर अपनी इज्जत नफ्स, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ इस्टीम को दाव पे लगा दूं। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं ज़िंदगी में, बड़ा मुश्किल होता है उन सिचुएशंस को देखना, सफ़र करना। हाय, बहरहाल आपका शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं, आपका शुक्रिया कि आप मुसलसल मेरी इन बेरब्त सी बातों को सुन रहे हैं। कैसे कर लेते हैं आप, कैसे कर लेते हैं? कहते हैं कि दुनिया के मुश्किल तरीन और बड़े बड़े कामों में से एक काम ये है कि किसी को तसल्ली से और सुकून से सुनना, लिसनिंग। आज के दौर में हर शख्स बोलने की चाह में है, हर शख्स चाहता है कि मैं बोल दूं, जो मेरे दिल में है, जो मैं सोचता हूं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा जाविया है, जो मेरी राय है, वो मैं बता दूं। अक्सर लोगों को हम सिर्फ इसलिए भी सुन रहे होते हैं कि हम फटाफट से इसकी बात मुकम्मल हो तो अपना जवाब दें, और कभी कभी तो हम अक्सर लोगों की गुफ्तगू को मुकम्मल भी नहीं होने देते। हम सिर्फ अपना जवाब रखने के लिए गैप्स ढूंढ रहे होते हैं कि जैसे ही अगला शख्स सांस लेने के लिए भी थोड़ा सा पॉज ले तो हम फटाफट से अपनी बात घुसेड़ दें। ऐसे में आप सुनते हैं, मुसलसल सुनते हैं, हम जैसों को सुनते हैं। क्या बात है भाई, कैसे कर लेते हैं आप, थोड़ा बताएं ना, हमें भी समझाएं। हम लोगों को भी बोलने की आदत होती है, सुनने की कम होती है। तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने। अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है, यूं है। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है? आज के प्रोग्राम में, क्योंकि आरजे डॉक्स नहीं आ सके, उनकी जगह मुझे आना पड़ा, मुझे हाजिरी देनी पड़ी, तो मेरी इस हाजिरी को कबूल कीजिएगा। बातें करने वाले हैं, कुछ दिल की बातें करने वाले हैं, वो बातें जो अक्सर हम करते हुए हिचके जाते हैं, वो बातें जो बाजुकात हमारे दिल में बहुत गहरी, बहुत अंदर तक जुड़ी होती हैं, लेकिन हम उनको कहीं कह नहीं पा रहे होते, निकाल नहीं पा रहे होते। आपके जहन में कोई सवाल हो, आइएगा, बात कीजिएगा। कभी कभी यूं भी तो होता है ना कि हमारे पास सवाल नहीं होते, जवाब होते हैं। हम वो जवाब देना चाहते हैं कुछ लोगों को, कुछ अपनों को, कुछ दुनिया को, मुआशरे को, ज़माने को, लेकिन दुनिया सुनने के मूड में नहीं होती। लेकिन हम जवाब देना चाहते हैं, हम अपने दिल की रखना चाहते हैं। सो अगर कोई सवाल हो तो आ सकते हैं, कोई जवाब हो तो भी आ सकते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत सा मौसम है आज। इस मौसम की मुनासबत से दिल की कैफियत को लेकर कोई खूबसूरत सा शेर हो, कोई गजल हो, कोई नज्म हो, कोई अच्छी सी बात हो, या कुछ भी, कुछ भी अगर कहना चाहो, बताना चाहो, सुनाना चाहो, तो आओ ना बात करते हैं। बात करेंगे तो बात बनेगी, क्या ख्याल है? सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं।

पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करने से पहले आपको लाहौर का सिटी कोड डायल करना होगा जो कि है 042। लाहौर का सिटी कोड है, इसके बाद आप नंबर डायल करेंगे 111-000-101, 042-111-000-101 पे आपकी कॉल आएगी। कुछ देर तक हम कॉल्स का सिलसिला लेंगे। इसके अलावा अगर आप SMS करना चाहें या फेसबुक पे कमेंट्स करना चाहें तो फेसबुक पे हमारा फ़ैन पेज है FM 101 लाहौर। FM 101 लाहौर सर्च करेंगे, हमारा पेज मिलेगा। इस पेज के सबसे टॉप पे मेरे इस प्रोग्राम की पोस्ट आ रही होगी, आइएगा उस पर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। या अगर SMS करना चाहें तो मोबाइल से टाइप कीजिएगा 101 space your name space your message और उसे भेजिएगा 4471 पे।

आज मौसम बड़ा मज़ेदार है और इस मौसम की मुनासबत से एक गाना याद आ रहा था, एक पुराना गाना, मेरे दौर का गाना, मेरे बचपन का गाना, धानी चुनरिया। सुनते रहें साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे जया अंजुम कहते हैं। धानी चुनरिया। सुनते रहें साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे जया

मुल जी वेलकम बैक। और 10:42 हो चुके हैं, आपका मेरा साथ 12 बजे तक रहने वाला है। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। आज आरजे डॉक्स के प्रोग्राम की जगह मैं आया हूँ, क्योंकि आरजे डॉक्स मसरूफ़ थे और शहर से बाहर थे। बहरहाल कभी कभी मैं सोचता हूँ

कभी आपने गौर किया है कि अक्सर जब हमें ख्वाबें आती हैं, रात को सोएं और ख्वाब आए, तो ख्वाबों में वो जगहें भी हमें दिखाई देती हैं जो हमने कहीं बचपन में उन जगहों पे कुछ वक्त गुजारा होता है। यूं भी होता है कि शायद हमने उन जगहों पे बहुत ज़्यादा वक्त ना गुजारा हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारे लाशऊर से वो कुछ खाके, वो कुछ यादें निकल के ख्वाबों की सूरत इख्तियार करती हैं और हम ख्वाबों में वो जगहें भी देखते हैं जो अब उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारा वहाँ पे आना जाना नहीं होता। कुछ जगहों से हमारी बड़ी यादें जुड़ी होती हैं, कुछ जगहों से हमारी बड़ी एफिलेशंस होती हैं। मेरा जो आबाई इलाका है वो लाहौर में इछरा है, इछरा मोड़। तो इछरे मोड़ पे बचपन गुजरा, स्कूलिंग, फिर उसके बाद कॉलेज, और फिर अब से 2-3 साल पहले तक मेरी रिहाइश इछरे में ही थी। अब आपने भी सुना होगा कि इछरा बाजार जो है वो सारा का सारा रीवैम्प हो चुका है, बड़ा खूबसूरत बन चुका है। लाहौर के मॉडर्न तरीन बाजारों में से एक बाजार है वो। आप वहाँ पे जाते हैं तो जो पुराने इछरे के लोग हैं, अगर कोई शख्स बाहर से किसी दूसरे मुल्क से वापस आए और आके वो इछरा मोड़ देखे, इछरा बाजार देखे, तो वो देखकर ये मानने से इनकार कर देगा कि ये वही जगह है जिसको वो छोड़ के गया था। वो इस कदर तब्दील हो चुकी है, इस कदर बदल चुकी है। बड़ी खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्या हुआ कि आज से 2 दिन पहले रात को मुझे एक ख्वाब आई और मैं क्या देखता हूँ कि वो जो मेरे बचपन का इछरा था, जब ये मेट्रो ट्रेन का पुल भी नहीं था, जब सड़कें यूं ही पार कर लिया करते होते थे हम, कोई अंडरपास नहीं होते थे, जब बहुत सादगी भी थी और चीज़ें बहुत डिफरेंट थी अब से, मैं जब उठा और मैंने उस ख्वाब को याद किया तो मुझे ख्याल आया कि मैंने ख्वाब में जिस मुकामात को, जिन जिन मुकामात को देखा है, वो अब बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। और मुझे तो भूल गया हुआ था कि पहले चीज़ें यहाँ पे ऐसे थी। और मैं सोच में पड़ गया कि ये इतनी पुरानी यादें और इतने पुराने खाके अचानक से मेरे जहन में और मेरे ख्वाबों में क्यों आए, और मैं कुछ पुराने वक्तों में, पुराने दौर में, उस अच्छे और भले और बेफिक्री के दौर में कहीं गुम सा हो गया। फिर उसके बाद मैं अपने उसी एरिया में, उसी इलाके में दोबारा गया, विज़िट किया, और मैं उन जगहों को, उन चीज़ों को ढूंढने लग गया जो मेरे बचपन से कहीं ना कहीं अटैच थी, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। मुझे लगे कि मैं किसी और जगह पे आ गया हूँ। मुझे लगे कि शायद ये वो जगह नहीं है, ये उस तरह से नहीं है। रिजेम्बलेंस है लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। कहते हैं कि संग दिलों को उनकी संग दिली और हसास लोगों को उनकी हसासियत मार देती है। कभी कभी आप जब ज़रूरत से ज़्यादा हसास हों, या कुछ चीज़ों के बारे में या कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा हसास हों, हद से ज़्यादा हसास हों, तो फिर अक्सर हसासियत मार देती है। आप बदलना नहीं चाहते कुछ चीज़ों को, आपको अच्छे बदलाव भी बाज़ुकात उस हसासियत के ज़ुमरे में आके अच्छे नहीं लगते। कभी कभी मैं उन लोगों को देखता हूँ, उन लोगों को जो काफ़ी अरसे के बाद, कई दहाइयों के बाद, बाहर किसी मुल्क में काम काज करके, नौकरियां करके, कारोबार करके वापस अपने वतन में आते हैं,
अपना गांव देखते हैं, अपना कस्बा देखते हैं, अपनी गली मोहल्ला देखते हैं या अपना शहर देखते हैं और उनको उन 10 15 20 सालों के बाद नज़र आने वाला अपना वो गली मोहल्ला, वो शहर, वो गांव, उस गांव की सड़क, वहां के कच्चे घर, वहां के बाज़ार जब बिल्कुल मुख्तलिफ और तब्दील नज़र आते हैं तो उनके अंदर कहीं कुछ ना कुछ टूटता है। वो जो एक अटैचमेंट, वो जो एक एफिलेशन होती है जो उन ख़ास जगहों से, उन ख़ास वक्तों से होती है, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती। उनको लगता है कि जैसे वो कुछ बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा कुछ मिस कर चुके हैं। जो लोग तो उन जगहों पे रह रहे होते हैं वो अपने सामने उन होती हुई तब्दीलियों को साथ साथ देख रहे होते हैं तो उनको इतना इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन जो लोग किसी शख्स, किसी जगह को बहुत देर बाद देखते हैं और एक मुकम्मल मुख्तलिफ हालत में देखते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। अक्सर होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको हमने बचपन में देखा होता है और हमारे जहन में उनके बचपन का ही खाका होता है और फिर यूं होता है कि कुछ सालों के बाद, 5-6 सालों के बाद या 7-8 सालों के बाद हम दोबारा उन बच्चों से मिलते हैं तो उन्होंने अच्छा खासा कद काठ निकाला होता है, उनकी शक्ल में थोड़ी पुख्तगी आ गई होती है, वो वैसे मासूम उस तरह के बचपन वाले बच्चे नहीं रहे होते और कभी कभी तो हम उनको देख के पहचान ही नहीं पाते कि ये वही है। हमारे जहन में तो अभी भी वही छोटा सा बच्चा, वही मासूम सी शक्ल, वही कहीं ना कहीं रचा बसा होता है तो हम उसको देख के उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसी तरह से बाजू का जगहों के साथ होता है, कुछ मुकामात के साथ होता है, कभी कभी बदले हुए लोगों के साथ और रवैयों के साथ भी होता है। हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं कि जिसको हमने एक अरसा उसके साथ वक्त गुजारा होता है लेकिन एक अरसे के बाद जब हम उस शख्स से दोबारा मिलते हैं तो वो यकसर बड़ा तब्दील शुदा फर्द होता है और हम देख के हैरान हो जाते हैं कि यार जिस शख्स से हमारी दोस्ती थी, जिससे हमारा ताल्लुक था, जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर करता था, वो तो बड़ा कोई और शख्स था। अब ये इसकी फिक्र, इसकी सोच, इसकी बातें उस पुराने वाले दोस्त, उस ताल्लुक, उस रिश्ते से नहीं मिलती जो पहले कभी था। कभी कभी कितने भरम टूटते हैं ना हमारे इस तरह से। खैर, आज हम कुछ पुरानी बातें करेंगे, कुछ बचपन की बातें करेंगे, कुछ नॉस्टैल्जियास की बातें करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप भी अगर प्रोग्राम में आएँ तो आके ये ज़रूर बताइएगा, गुफ्तगू कीजिएगा कि वो चीज़ जो आपकी बचपन से जुड़ी हो, कोई ऐसी याद, कोई बात, कोई शख्स, कोई चेहरा, कोई जगह जो बचपन से जुड़ी हो लेकिन अब वो जगहें, वो लोग तो शायद मौजूद हैं लेकिन अब वैसा नहीं है, अब फील वैसी नहीं है, ताल्लुक वैसा नहीं है, वो जगह, उसकी हयत वैसी नहीं है, बदल गया है, तो आपको कैसा लगता है उन सब चीज़ों को देख के?

आपके कुछ मैसेजेस को शामिल करते हैं। सुग्रा जाफरी हमारे साथ हैं। सुग्रा थैंक यू सो मच। आतिफ ने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ और कुछ मज़ीद दोस्त, कुछ जानूज हमारे साथ हैं, इनको भी देख लेते हैं, इनके भी मैसेजेस को शामिल कर लेते हैं। FM 101 लाहौर का जो ऑफिशियल फ़ैन पेज है, यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं, इनको सबसे पहले हम देखते हैं। मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। आप सलाम करते हैं, प्रोग्राम पसंद करते हैं, आपकी मोहब्बत है। बिनते सदीक कहती हैं कि आप किसी को वफ़ादारी की किताबें पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेवफा इंसान वही रहेगा, क्योंकि वफ़ादारी सिखाई नहीं जाती, उसे जिया जाता है। क्या बात है, क्या ही खूबसूरत बात है। वफ़ादारी वाकई नहीं सिखाई जाती। अच्छा, अक्सर हम लोग ये भी कभी कभी बहस करते हैं कि मर्दें मर्द ज़्यादा वफ़ादार होते हैं या ख़वातीन वफ़ादार होती हैं, लड़कियां वफ़ादार होती हैं या लड़के वफ़ादार होते हैं। तो मैंने किसी जगह पे एक जुमला पढ़ा था कि वफ़ादारी मर्द या औरत में नहीं होती, खून में होती है। आपका खून बताता है, आपका हसब नसब, आपका घर घराना, आपकी नस्ल बताती है कि आप वफादार हैं कि बेवफा हैं। इसका ताल्लुक मर्द व जन से नहीं है, लड़की होने से या लड़का होने से नहीं है। जो वफादार होगा वो हमेशा वफादार होगा, हर मुकाम पे वफादार होगा, उसके खून में वफादारी होगी। और जो नहीं होगा वो यकीनन नहीं होगा। कुछ भी कर लो, वफा के ऊपर कितनी भी किताबें पढ़ा लो। सही कहा आपने बिनते सदीक, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ ये कहती हैं कि ये भी अच्छा है कि सिर्फ सुनता है, दिल अगर बोलता तो कयामत होती। वाह वाह, बहुत अच्छे। और मुंडा सियालकोटी, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, आपने बहुत सारे लोगों को सलाम दुआ भेजा है, आपकी तरफ से यकीनन सबको वो सलाम और मोहब्बतें पहुंच चुकी होंगी। सियालकोट से आप हमें सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बत है। नज़ीर खोसो प्रोग्राम को पसंद करते हैं, शुक्रिया। सोबतपुर बलूचिस्तान से। और इसके साथ साथ अमर रमेश कुमार सलाम करते हैं और दुआएं देते हैं, आपका शुक्रिया। मरीना बिलाल, आपका शुक्रिया, सलाम करती हैं। फिज़ा राजपूत कहती हैं कि आरजे डॉक्स कहाँ हैं, आरजे डॉक्स न जाने कहाँ हैं। अगर आपको मालूम हो, पता चले, तो मुझे भी बताइएगा कि वो कहाँ हैं। जिमल कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो। स्याह रात में जलते जुगनुओं की तरह दिलों के जख्म भी मोहसिन कमाल होते हैं। क्या बात है, ये गाना बड़े बुरे तरीके से मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। इसकी एक एक थाप, इसकी एक एक बीट, इसकी एक एक फील कहीं ना कहीं लेकर जाती है। इस दुनिया से परे, आसमानों से परे, आज कोई चला है सज के पियाने, कहीं ना कहीं ये गीत मुझे कुछ देर के लिए सही, लेकिन मुझे मेरे इस जिस्म से आजाद करके मेरी रूह को कहीं और लेके जाता है। यकीनन आप में से भी कई लोगों की यादें इस गीत से यकीनन जुड़ी होंगी। ये गाना सुनते हैं, इसके बाद आपसे कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। जुड़े रहें, साथ साथ रहें, मिलते हैं इस गाने के बाद। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

0: ओ मनवारे, क्या बात है ना। आज मैं कहीं पे पहुंचा हुआ हूं, आज मैं किसी और जगह पे किसी और ट्रांस में हूं, और शायद आज मैं किसी गुजरे हुए वक्त जमाने लम्हे पुरानी यादों या फिर कह लें कि अपने किसी बचपन के किसी दौर में मौजूद हूँ। और मेरा जी चाह रहा है कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपको भी उन जगहों, उन रस्तों, उन एहसासात की सैर करवाऊँ। क्या ख्याल है, चलते हैं मेरे साथ। मेहरब हैं विलेज औलख, कहते हैं कि सर आप कैसे हो, आपको सुनकर अच्छा लगता है। मोहब्बत में धोखा खाया है, 8 साल हो गए हैं, अभी तक वो शख्स नहीं भूलता, क्या करूं। मैं भूल जाऊं अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भुलाऊं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहां तो दिल का ये आलम है, क्या कहूं कमबख्त, भुला सका ना सिलसिला जो कभी था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो तुमसे मैं कह सका ही नहीं। मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। अगर ये हाल है दिल का तो कोई समझाए, तुम्हें भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भुलाऊं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। ये मोबाइल होता है, ये कंप्यूटर होता है, ये लैपटॉप होता है, ये मेमोरी कार्ड होता है कि जिसमें से हम चीजों को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग और इसमें मौजूद याददाश्तें, ये ऐसी होती हैं कि इनके लिए कोई डिलीट का बटन नहीं होता। हम लाख चाहे कुछ भी करके इनको भुला नहीं सकते। और ख़ास तौर पे जिन चीज़ों को हम इरादतन भुलाना चाहते हैं, वो तो हमें हमेशा याद रहती हैं और याद ही रहती हैं। वो कोई बात हो, कोई शख्स हो, कोई ज़माना हो, कोई खुशबू हो। आप जानते हैं ना कि कभी कभी यूं ही राह में चलते चलते किसी जगह पहुंच के अचानक से हमारे नाक से कुछ खास खुशबू टकराती हैं, और उन खुशबुओं के टकराने से अचानक हम किसी खास वक्त और ज़माने में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन खुशबुओं का ताल्लुक हमारे पास्ट, हमारे माजी कहीं से होता है। और वो सारे ज़माने, वो दौर किसी फिल्म की तरह, किसी ड्रामे की तरह, किसी वीडियो की तरह हमारी आंखों के सामने, हमारे जहन में मुसलसल चलने लगते हैं। वो लोग, वो चेहरे, वो तमाम वीडियो क्लिप्स भी अचानक से हमारे जहन में आ जाते हैं एक खुशबू को सूंघ के, जो बड़े अरसे से हमने जिनके बारे में सोचा भी ना हो। हाय, अरसलान राजपूत शेखुपुरा से सुन रहे हैं, कहते हैं आप सबको, सुनने वालों को सलाम, वालेकुम सलाम। रुबाब कहती हैं कि मेरा दिल बहुत उदास है, आज डॉक्स नहीं आए, आप भी अच्छा साथ निभा रहे हैं, कैसे कर लेते हैं आप ऐसी बातें। असल में मुझे बातें करने के पैसे मिलते हैं तो मैं फिर कर ही लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सना खान फ्रॉम मुल्तान, आई लाइक योर वॉइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सना, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। निमल कहती हैं कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, किसी किताब में महफूज कर लीजिए। कभी कभी कुछ फूलों की किस्मत में यही होता है कि वो देर तलक किसी किताब में महफूज रह जाए। कभी कभी यूं भी होता है, आपने शायद किया हो या ना किया हो, मेरे साथ ऐसे इत्तफाक हुए हैं कि पुरानी किताबों में बाज़ुकात आपने कुछ चीज़ें छुपा के रखी होती हैं, कुछ फूल, कुछ मोर के पंख, कुछ खतूत या उन खतूत के टुकड़े, कभी कभी कुछ रसीदें, या कोई भी ऐसा जो चीज़ किताब में कहीं ना कहीं रख के महफूज की जा सकती है। और जब आप कभी भूले से उस किताब को खोलते हैं और अचानक से वो किताब में से वो पुरानी चीज़ निकलती है, तो वो सिर्फ चीज़ नहीं निकलती, वो बहुत कुछ साथ लेकर आती है। वो वक्त, वो ज़माना कि जब हमने किसी ख़ास नीयत से उस चीज़ को उस किताब में रख के महफूज किया होता। जिया नियाजी फ्रॉम इस्लामाबाद कहती हैं, सलाम दज़ियां अंजुम, आई एम पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट टाइम ऑन रेडियो, योर थॉट्स एंड टॉक्स आर वेरी डीप, योर टॉकिंग स्टाइल अर्ज मी टू मैसेज, कीप इट अप। एंड एक पोइट्री कहूँगी, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकून, कि जिसका जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। क्या बात है जिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमें इस्लामाबाद से सुन रही हैं। कभी कभी सुन लिया करें, हम भी अच्छे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस हमारे साथ हैं, कहती हैं कि कहोटा से भाई बहुत दिल की बातें कर रहे हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा इन्होंने आई थिंक अपना नाम नहीं लिखा है, मैं अब्दुल हमीद सिटी उमरकोट से आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, अभी कराची मजदूरी करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे लिए कोई सॉन्ग सुना दें। नहीं है शिकवा मुझे किसी की बेरुखी से गालिब, शायद हम न थे दिलों में बसने के काबिल। महरब कहते हैं, पहले वो मुड़ मुड़ के देखते थे, अब देख कर मुड़ जाते हैं। जी हाँ, कुछ लोग हमें देख कर मुड़ जाते हैं, और कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको देख के हम भी दूर से मुड़ जाते हैं। जिया नियाजी फ्रॉम इस्लामाबाद कहती हैं, अच्छा ठीक है, आपने ये मैसेज दोबारा भेजा है, जिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके दोबारा ये मैसेज करने पे। इसके अलावा शाहीना अंसारी फ्रॉम कराची कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम ज़िया सर, कैसे हैं आप, आज काफ़ी टाइम बाद आपको सुन रही हूँ, सभी सामेईन को भी खुलूस भरा सलाम। और कहती हैं कि दादी अम्मा से हम किस्से सुनते थे, बचपन के वो दिन भी कितने अच्छे थे, बेफिक्री थी ऐसी कि हर मौसम में हम बिस्तर में सपने बुनते रहते थे, इतने होते थे हम भी हसास, कभी चिड़िया के मरने पर घंटों रोते थे, छोटी छोटी सी बातों पे हम अक्सर देर तलक वैसे ही हंसते रहते थे, अब सच्चाई झूठी झूठी लगती है, जब हम बच्चे थे तो कितने सच्चे थे, याद है बचपन का वो पहला प्यार मुझे, एक दूजे को छुप के देखा करते थे, जाने कैसे भटक गए हैं आतिफ हम, ये तो सारे देखे भाले रस्ते थे। हाय हाय हाय हाय, क्या बात है। वो मुझे भी आपकी ये गज़ल जो आपने भेजी आतिफ सईद साहब की, मुझे भी एक नज़्म याद आ गई बचपन के हवाले से, कि बचपन के दुख कितने अच्छे होते थे, तब दिल नहीं सिर्फ खिलौने टूटा करते थे, वो खुशियाँ भी न जाने कैसी खुशियाँ थी, तितली के पर नोच के उछला करते थे, पाँव मार के खुद बारिश के पानी में खुद अपनी कश्ती डुबोया करते थे। छोटे थे तो मकरो फरेब भी छोटे थे, दाना डालकर चिड़िया पकड़ा करते थे, अपने जल जाने का एहसास तक न था, जलते शोलों को छुआ करते थे। क्यों खुशबू के उड़ते ही मुरझाया फूल, कितने भोलेपन से पूछा करते थे। आज भी वो ताबीरें लहू लहू रुलाती हैं, बचपन में जो हम सपने देखा करते थे। अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है, बचपन में जी भर के रोया करते थे। बचपन में जी भर के रोया करते थे। अब वाकई कितना अजाब लगता है, कभी कभी हम रोना चाहते हैं। बचपन में कोई फिल्टर नहीं होता ना, हम गली में हैं, हम बाजार में हैं, हम स्कूल में हैं, हम किसी शादी ब्याह पे हैं, हम किसी इवेंट पे हैं, हम घर पे हैं, घर से बाहर हैं, जहां भी हैं, कहीं पर भी किसी भी बात पे आंसू बहा लेते थे, रोना शुरू कर देते थे, बा आवाज रोना शुरू कर देते, कभी कभी तो चीख चीख के भी रोना शुरू कर देते थे। कोई मसलहत नहीं थी ये, नहीं बचपन में हम कभी भी सोचते कि कोई देखेगा हमें रोता हुआ, देखेगा तो देख के क्या सोचेगा। अब तो एक आंसू भी रुसवा कर जाता है। कॉल लेते हैं यार, कॉल्स का सिलसिला लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ पहला कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन बात कर रहा है, कहां से?
1: तसव्वुर बात कर रहा हूं जी, डस्का से।
0: तसव्वुर?
1: जी, तसव्वुर बात कर रहा हूं डस्का से।
0: डस्का से। तसव्वुर भाई, आज ही मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठा था, वालिद और वालदा के साथ। तो मेरे वालिद साहब बता रहे थे कि मेरे वालिद साहब का जो बचपन है वो डस्का में गुजरा है। हमारे जो नाना, हाँ हमारे जो नाना थे वो डस्का में हुआ करते थे, और वो एक मस्जिद के इमाम थे। तो वो मुझे अपने सारे किस्से सुना रहे थे कि जब हम अपने नाना के घर जाते होते थे तो किस तरह से उनका घर मस्जिद के साथ ही मुंसलिक था, और उसके आगे एक बागीचा था, और मैं अपने नाना के साथ ऐसे बैठता था, हम बातें करते थे, उनका घर ऐसा था, उस घर में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो आपने डस्का का नाम लिया तो अचानक से सारी रील फिर से चल पड़ी।
1: अच्छा जी। हाँ माशाल्लाह, मैं ना, मैं भी इधर डस्का में ना इमाम आचर हूँ, मैं भी इधर।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जी, जी। जबरदस्त।
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं प्रोग्राम आपका सुनता रहता हूँ, तो मैं दो साल हो गया आपका प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ आपका।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: हाँ तो बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा होता है आपका, बहुत अच्छी बातें होती हैं।
0: बड़ी मोहब्बत,
1: आपको सलामत रखे जी।
0: बड़ी मोहब्बत तसव्वुर भाई, बहुत
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत सीखने को मिलता है, बहुत मालूमात मिलती है आपके प्रोग्राम से ना।
0: सर आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस अल्लाह ताला जी आपको सलामत रखे, सब सुनने वालों को सलाम।
0: बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत
1: शुक्रिया जी,
0: थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। डस्का वालों क्या बात है आपकी। वैसे मैं डस्का नहीं गया हुआ, सिर्फ एक बार सियालकोट से वापसी पर डस्का से होते हुए गुजरे थे, और आई थिंक वहाँ से, वहाँ के कोई बड़े मशहूर से दही भल्ले, दही भल्ले और गोलगप्पे, तो शायद एक दफ़ा वहाँ पे, मेरे ख्याल से वो डस्का ही था, तो वहाँ पे रुक के थोड़ी देर गाड़ी में वो दही भल्ले खाए थे और गोलगप्पे खाए थे, और उसके बाद फिर वापस आ गए। हर जगह की अपनी अपनी बात होती है, हर जगह की अपनी अपनी तासीर होती है ना। और खास तौर पे ये जो निस्बतें होती हैं ना, सारा मसला इनका होता है। जगह अहम नहीं होती, लोग अहम नहीं होते, जब हम उनके साथ किसी ना किसी निस्बत से जुड़ जाते हैं। हमारा कोई वक्त, हमारी कोई खास याद, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, जब जुड़ जाती है तो वो जगह भी फिर कुछ खास हो जाती है। वो मुकाम, वो लोग, वो चेहरे, वो वक्त, सब कुछ खास हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन बात कर रही है, कहाँ से?
2: मैं ना ही बात कर रही हूँ लाहौर से, और फर्स्ट टाइम मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की है।
0: बहुत शुक्रिया। अपना नाम दोबारा बताइएगा।
2: नाहिद।
0: नाहिद जी, नाहिद क्या कहना चाहेंगे
2: जी? मैं, मेरे पास सवाल नहीं है, जवाब है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। तो दीजिए जवाब, बता दीजिए सबको, खोल दीजिए दिल अपना
2: जी। आप अभी कह रहे थे ना कि सारे लोग आर्टिडॉक्स के इंतजार में हैं और आपकी हाजिरी को कबूल किया जाए, और बहुत ही कचरे नस्ती से बहुत सी बातें कर रहे थे, तो ये आप कुछ ज्यादा ही कह गए हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं कि बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, आपका इंतजार करते हैं, और हो सकता है कि आपकी गैर मतवक आमद जो है उन्हें खुश किया हो। आप ये कैसे सोच रहे हैं कि लोग आपको गवारा करें या आपको
0: आपकी मोहब्बत है, चाहत है वो सर आंखों पे। लेकिन होता क्या है कि जब किसी का एक वक्त मुकर्रर होता है ना, और वो बड़े अरसे से अपने उस मुकर्रा वक्त पे कुछ भी कर रहा होता है, तो लोग फिर उसी को ही तवक्को, उसी की तवक्को कर रहे होते हैं। तो जब उसकी जगह कोई और आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, और आरजे डॉग्स हमारे बहुत मंझे हुए, बहुत बड़े आरजे हैं, तो यकीनन उनकी जगह पे आना, बल्कि किसी भी आरजे की जगह पे आना, क्योंकि लोग उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती हैं, उनके लिसनर होते हैं, उनका वक्त होता है, तो उस उनके लिए ही आए होते हैं, बैठे होते हैं। तो उन लिसनर्स के लिए भी फिर कुछ ना कुछ तो मदावा होना चाहिए ना, चाहे अल्फाज की सूरत में ही हो
2: जी। लेकिन आपके इस बात का जवाब भी ये है कि हर शख्स की एक इंफरादी हैसियत भी होती है।
0: बिल्कुल ठीक है।
2: और मैं आपको जब से आपने ये प्रोग्राम करना शुरू किया है ना
0: जी,
2: तब से सुन रही हूँ, और उससे पहले जब एक तवील गैप था, और उससे पहले आप प्रोग्राम करते थे
0: जी,
2: तब भी मैं सुनती थी, लेकिन अभी मैंने कॉल फर्स्ट टाइम की है सिर्फ जवाब देने के लिए।
0: चलें, बहुत शुक्रिया नाहिद जी, मुझे बहुत जी, अच्छा लगा, और आप आया करें हमारे प्रोग्राम्स में, आप अच्छी, आप अच्छी गुफ्तगू करती हैं। और मुझे ये बताइए, चलें थोड़ा सा मौजू पे भी आइए, कुछ बचपन के हवाले से, किसी याद के हवाले से।
2: नहीं, मेरे पास सभी आपकी बातों के दो जवाब हैं, लाजमी में देखिए, और उसके बाद मैं चंद इशार सुनाऊंगी
0: जी। अता कीजिए, बताइए।
2: अभी आप जो बात करते हैं ना, जैसे कि कहते हैं कि आपसे कोई पूछता है, बल्कि आप कहते हैं कैसे कर लेते हैं आप, तो आपको तो पैसे मिलते हैं, आपका करना तो कोई कमाल नहीं है।
0: हाँ।
2: असल में कमाल तो हमारा है जो बिना पैसों के हम कर लेते हैं।
0: यही तो मैं कहता हूँ कि आप कैसे कर लेते हैं, यही तो मुझे समझ नहीं आता ना कि कैसे कर लेते। चलो सानू ते पैसे मिल देने ना साढ़ा ते
2: पैसे नहीं कर लेने
0: सानू ते पैसे लभ देने, असी ते ड्यूटी करने हैं, साड़ी ते नौकरी है, तुसी के इंज कर लेंदे हो।
2: साड़ी भी सर समझो नौकरी लगी है
0: फिर ठीक है जी।
2: अपना एक टाइम जो है ना
0: जी,
2: हम लोगों ने भी अपना टाइम कुछ लोगों के नाम किया होता है।
0: बिल्कुल ठीक है,
2: बस वो हमारी भी ड्यूटियां लगी हुई हैं। चलिए मैं आपको दो तीन इशार सुनाती हूँ
0: जी, अता कीजिए,
2: और फिर अगर आप इजाजत देंगे तो, अदरवाइज बचपन की बहुत सारी बातें लोग करेंगे आपसे, मैं चंद इशार सुनाऊंगी आपको।
0: जी जी सुनाइए।
2: शाखे इमकान पे कोई कांटा उगा, कोई गुंचा खिला, मैंने गजलें कही।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: शाखे इमकान पे कोई कांटा उगा, कोई गुंचा खिला, मैंने गजलें कही। अय्यामे ईजा गुरेजी में जो भी हुआ, मैंने होने दिया, मैंने गजलें कही,
0: मैंने गजलें कही। वाह वाह, क्या खूब है ना रदीफ ये। वाह।
2: लोग चीखा किए, वो जो माबूत है, बस उसी की सना, बस उसी की सना।
0: वाह वाह।
2: लोग चीखा किए, वो जो माबूत है, बस उसी की सना, बस उसी की सना। मेरी शहरत से मेरे खुदा ने कहा, मुझको अपनी सुना, मैंने गजलें कही।
0: होए होए होए, कमाल हो गया, कमाल हो गया।
2: बेजा में थी जब शहर की हवा आप जीते रहे आपका हौसला।
0: वाह वाह।
2: सबसे बेजा में थी जब शहर की हवा आप जीते रहे आपका हौसला। मैं उसूलों वगैरह का मारा हुआ मुझको मरना पड़ा। मैंने गजलें कही
0: मैं उसूलों का मारा हुआ। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे।
2: कोई दुख भी ना हो कोई सुख भी ना हो और तुम भी ना हो और मिसरा कहें। कोई दुख भी ना हो कोई सुख भी ना हो और तुम भी ना हो और मिसरा कहें। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा होता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। मैंने गजलें कही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे।
2: आखिरी शेर है, इश्क दो ही मिले मैंने दोनों किए, एक हकीकी मिला एक मजाजी मिला।
0: हा हा हा हा, क्या बात है, क्या ही बात है।
2: इश्क दो ही मिले मैंने दोनों किए, एक हकीकी मिला एक मजाजी मिला। मैं मुसलमान भी मैं सलमान भी, मैंने कलमा पढ़ा मैंने गजलें कही।
0: वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: थैंक यू सर,
0: बहुत शुक्रिया नाइत जी, आती जाती रहा करें। थैंक यू,
2: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़ जी। ओए होए होए होए, काम बड़ा हैवी हो गया है, पता है आपको। आरजे सुगरा जाफरी हैं सियालकोट से और हमारे साथ वो मौजूद हैं, सुन रही हैं, साथ साथ अपने तासुरात भी भेज रही हैं। मोहब्बत है आपकी। अभी हम आपको भी कॉल पे लेते हैं, यकीनन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
3: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: जी बिस्मा, क्या कहना चाहेंगी?
3: मेरी तो एकदम हार्ट बीट तेज हो गई है, कब से नंबर बिजी बिजी जा रहा था, तो मैं मेरा ध्यान और तरफ था तो आपने एकदम से सलाम लिया, तो मैं क्या सुनाऊँ आपको, आपकी बातें सुन रही थी और मुझे याद आ रहा था कि मम्मा जो है ना मेरी शादबाग की रहने वाली है, ठीक है, तो हम लाहौर से हैं, तो वहाँ जब हम उस साइड पे जाते हैं ना तो फिर मम्मा बताती हैं कि यहाँ पर पहले यहाँ पर दही भल्ले वाला होता था, उसके बहुत मजे के होते थे, यहाँ पर वो खीर होती थी, यहाँ से मैं वो चिकन खाती थी, मीन्स के वो फ्राई लेग पीस होता है लवली वालों का, ये वो, तो फिर वो बातें बताती हमें, तो फिर अब कहती अब यहाँ नहीं है, पहले यहाँ ये होता था ये होता था, तो ये था एक बात। और दूसरी, अब बोल रहे थे किताबों में जैसे कोई चीज़ हम रख के, और मेरी मम्मा बुक्स रीड करती हैं तो अक्सर उसमें पैसे रख के भूल जाती है, तो जब वो हम बच्चों के हाथ आते थे तो हमारी ईद हो जाती थी, हमने कहा है वो कभी 20 रुपये है कभी 50 रुपये का नोट, कभी 10 रुपये का वो निशानी के तौर पे रखा होता था और वो भूल जाती है,
0: वो
3: इस तरह की है, 100 रुपया भी कभी मिल जाता था बचपन में, तो हमारी तो ईद होती थी कि वाह यार ये तो अच्छी मम्मा है, ये रख के भूल जाती है पैसे। तो दूसरा ये कि हार्ट बीट इतनी तेज है, ये देखो पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तब भी ऐसे ही हुआ था, पर अब ये काफी, अब तो मैंने बात करती हूँ आपसे तो उसके बाद ये ना मैं आज छत पर हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और आसमान पे तारे चमक रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर से जहाज गुजर रहा था, मैं ये नीचे ना रोड पर देख रही थी, यहाँ पे मैं ऐसे खोई हुई थी, साथ में सुन रही थी जो अभी आई थी फीमेल, कोई बात कर रही थी, इनकी बातें सुन रही थी, तो और सोच रही थी कि आज शायद कॉल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल सरप्राइज पे सरप्राइज हो रहे, कल रहमान भाई मैंने ना लेट ट्यून किया, मैंने कहा आज डॉक्स तो आते लेट हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कस्टर्ड रखा हुआ था बना के फ्रिज में, वो निकाला और खाना शुरू कर दिया, और मैंने 10:30 के करीब करीब मैंने ट्यून किया तो आरजे रहमान की आवाज़ सुनी मैंने, तो मैं हैरान होगी, मैंने कहा डॉग्स कहाँ है, तो फिर बाद में उनका शो सारा सुना तो पता चला कि वो बिजी हैं आज। फिर मुझे था कि रहमान भाई आएंगे तो ज़िया भाई आ गए, तो ये सरप्राइज है। और वैसे एक बात बताऊँ, आपके शो में मेरा होता है कि मैं फर्स्ट कॉलर बनूँ। पता नहीं क्यों, मैं कहती हूँ मेरी पहले कॉल मिले, मैं आपसे सबसे पहले बात करूँ।
0: चलें तो बिस्मा बहुत शुक्रिया आपने कॉल की।
3: आपको कुछ सुनाऊं?
0: फटाफट से सुना दें, कॉल काफी लंबी हो गई है।
3: फटाफट से सुना दूं?
0: हाँ।
3: वो गाना था वो फटाफट तो नहीं सुना सकती।
0: चलें सुना दें, शुरू के थोड़े से चंद बोल सुना दो।
3: आपने अपना वो फेवरेट सॉन्ग लगाया ना, तो फिर मुझे भी याद आ गया जिसके साथ मेरी यादें वो बसता है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ।
0: सुनाओ सुनाओ जल्दी सुनाओ।
3: कुछ इस तरह तेरी पलके मेरी पल को से मिला दे, कुछ इस तरह तेरी पलके

0: क्या बात है, क्या बात है बिस्मा, मुझे भी बड़ा कुछ आपने याद करवा दिया है इस गाने से ना।
1: आप ये प्ले करिए, बड़ा मजा आएगा। तो मौसम भी बहुत रोमांटिक है और लड़की भी बड़ी मस्त हुई पड़ी है ऊपर छत पर आके, हवाएं चल रही है ठंडी।
0: चलो मस्त लड़की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: अल्लाह
0: हाफिज। ये भी सही है, ये भी अच्छा है। अच्छा बिस्मा ने ना एक बात कही कि अक्सर हम जगहों पे जाते हैं और उन जगहों पे जाके हम सोचते हैं कि यहाँ पे पहले कोई दही भले हुआ भले वाला हुआ करता था, यहाँ पे ऐसी एक दुकान हुआ करती थी, यहाँ पे एक छोटा सा पार्क हुआ करता था, यहाँ पे एक दरख्त हुआ करता था, यहाँ पे इस तरह से दुकानें हुआ करती थीं, यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार लगता होता था, यहाँ से एक गंदा नाला गुजरा करता होता था, यहाँ पे कुछ लोग रेड़ी लगा के बच्चों के खिलौने बेचा करते थे, यहाँ पे बर्तन की दुकान हुआ करती थी, यहाँ से आइसक्रीम बड़ी ज़बरदस्त मिला करती होती थी, यहाँ पे एक फ्रूट चाट वाला बैठा करता था, यहाँ पे रमजान में समोसे बड़े अच्छे मिलते होते थे। ये मस्जिद अब तो बड़ी शानदार हो गई है, उस वक्त में ये बड़ी छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, यहाँ के नमाजी इस तरह से वजू किया करते होते थे, ये बाजार ऐसा नहीं था। कितनी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं, और जब हम उन जगहों से गुज़रते हैं तो गुज़रते हुए हमें एहसास होता है कि वक्त के गुज़रने के साथ वो जगहें वो चीज़ें अपनी हयत तब्दील कर चुकी हैं। कभी कभी यूं होता है कि मैं ऐसी जगहों से जब गुज़रता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद जैसे मुझसे मेरा बचपन छीना जा रहा है। वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं मुझसे मुंसलिक थीं, जो मुझसे कनेक्ट करती थीं, जिनसे मैं कनेक्ट करता था, या जिन चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो मुझसे छीन ली गई हैं वक्त ने, हालात ने, ज़माने ने, इर्तका ने, एवोल्यूशन ने। तो दिल में एक ना अजीब सी हूक उठती है कि मैं जिस जगह पे जाके जिस चीज़ को रिकॉल करना चाह रहा हूँ, उस जगह पे जाके भी उस चीज़ को रिकॉल कर नहीं पा रहा, क्योंकि वो जगह अब बदल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से?
2: जी मैं होमा से फैसलाबाद।
0: नाम दोबारा बताइए।
2: होमा बात कर रही हूँ।
0: होमा फैसलाबाद से, कैसी हैं आप? ठीक हैं
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। बल्कि आज मैं लाहौर आई।
0: ओके
2: जी, तो आपसे जो है फर्स्ट टाइम बात कर रही है, आज से डॉक्टर के शो में उनसे तो बात होती रहती है, लेकिन आपको मैंने आज पहली बार सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: और ऐसा है कि मैं खुद भी लिखती हूँ पहले जी, पहले मैं आपको अपने शेर सुनाऊंगी, उसके बाद मैं एक गजल गुनगुनाऊंगी।
0: जी जरूर जरूर सुनाइएगा।
2: ये तो ऐसा क्या है कि कभी हंसते हुए चेहरों के पीछे देखो, सकती हुई तस्वीर नजर आएगी, उनकी नजरों में जरा झांककर तो देखो, उनकी नजरों में जरा झांककर तो देखो, बिखरते ख्वाबों की तबीर नजर आएगी।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: और गुनगुना क्या रही हैं आप?
2: जी गुनगुना रही हूँ मैं एक जो गजल है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे शायद शाहिद साहब हैं कोई, उन्होंने गुनगुनाई है, लेकिन अच्छे से मुझे याद नहीं, शायद आपको याद आ जाए जब मैं गुनगुनाऊंगी। इनके सिंगर कौन?
0: जी सुनाइए.
2: अजनबी शहर के अजनबी रात के.

बहुत देर तक याद आती रही अजनबी शहर की।

0: रोज जीती रही जिंदगी भी हम आजमाती रही और हम भी उसे आजमाती रही अजनबी शहर से अजनबी रास्ते
1: क्या बात है हुमा जी, बहुत शुक्रिया आप आई, आपने बड़े खूबसूरत गायकी भी की और बड़े अच्छे अशआर सुनाए। थैंक यू सो मच आती जाती रहा कर।
0: थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।

वेल जी, एक गाना लगाते हैं, क्या ख्याल है? ये गाना भी मेरे दिल के बड़े करीब गानों में से एक है। ये गाना सुन के भी मैं कहीं पे पहुंचता हूँ, कहीं चला जाता हूँ। अहमद जहांजे ऑन द वोकल्स, बड़ा ही अंडररेटेड सा गाना है, लेकिन क्या कमाल का गाना है। कुछ आवाजें, कुछ धुनें, कुछ कंपोजिशंस और कुछ लिरिक्स बिल्कुल ऐसे ही किसी जगह किसी जहान में लेके जाती हैं, जिस तरह ये धुन मुझे अभी कहीं लेके जा रही है।

हाँ, किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, हाँ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए, याद है, याद है, याद है, हम तुझे दिल मानते थे, अपने सीने में मचलता हुआ जिद्दी बच्चा, तेरे हर नाज को उंगली से पकड़कर अक्सर नित नए ख्वाब के बाजार में ले आते थे, तेरे हर नखरे की फरमाइश पर एक जीवन की तमन्नाओं की बीनाई से हम देखते थकते ही न थे। सोचते थे एक छोटा सा नया घर, मोहब्बत की फिजा हम दोनों, सोचते थे एक छोटा सा नया घर, मोहब्बत की फिजा हम दोनों, और किसी बात पे तकियों से लड़ाई अपनी, फिर लड़ाई में कभी हंसते हुए रो पड़ना और कभी रोते हुए हंस पड़ना, फिर थक हार कर गिर पड़ने का मासूम खुशी बख्श ख्याल, याद है, याद है, हम तुझे सुख जानते थे, रात हंस पड़ती थी बेसाख्ता दर्शन से तेरे, दिन तेरी दूरी से रो पड़ता था, याद है, याद है, हम तुझे जान कहा करते थे, याद है, हम तुझे जान कहा करते थे, तेरी खामोशी से मर जाते थे, तेरी आवाज से जी उठते थे, तुझको छू लेने से एक जिंदगी आ जाती थी शरयानों में, थाम लेने से कोई शहर सा बस जाता था वीरानों में, याद है, याद है, याद है, याद है, हम तुझे मिलने के लिए वक्त से पहले पहुंच जाते थे, याद है, हम तुझे मिलने के लिए वक्त से पहले पहुंच जाते थे, और मुलाकात के बाद बहुत देर से घर आते तो कहते हमें कुछ ना कहो, हमें कुछ ना कहो, हमें कुछ ना कहो, हम बहुत दूर से घर आए हैं, इस कदर दूर से घर आए हैं कि शायद ही कोई आ पाए, याद है, याद है, हम तुझे भगवान समझते थे मगर कुफ्र से डर जाते थे, तेरे छिन जाने का डर ठीक से रखता था मुसलमान हमें, आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ।

0: आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल FM 101।
1: बिन तेरे क्या है जीना।
0: FM 101, the sound of new millennium. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

तुम्हें कैसे बताएं हम मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता। कहानी में तो हम वापस भी आते हैं, मोहब्बत में पलटने का कोई रास्ता नहीं होता। जरा सोचो कहीं दिल में खराशे डालती यादों की सफा की, कहीं दामन से लिपटी है किसी भूली हुई साथ की नम नाकी।

बाज़ औक़ात आप जिस चीज़ की खोज में लगे हुए होते हैं वो चीज़ आपकी आंखों के सामने ही कहीं पड़ी होती है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही होती उस वक्त, जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा ज़रूरत होती है उसकी, है ना। ऐसे ही इंसानों की भी अकसाम होती हैं। बाज़ औक़ात हमें किसी ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके पास हमें लगता है कि हमारा गम कम हो जाता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर वो इंसान हमें मुयस्सर ना हो, हमें मिल ना पाए, तो एक अजीब सी थकन है जो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं उस चीज से। बहरहाल एक ट्रैक मुझे यहां पे नजर आया, इस ट्रैक को सुनते हैं, इसके बाद लौट कर वापस आते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो चीजें बिखरी हुई हैं उनको समेटता हूँ और दूसरे चंक में मेरे साथ मेरे मेहमान होंगे और उनकी खूबसूरत आवाज होगी, ट्रैक्स होंगे। मुझे पता है इस बात का इल्म है कि ऐसे मौके पे बहुत से लोग जो होते हैं वो जा चुके होते हैं, चेंज कर चुके होते हैं फ्रीक्वेंसी को। तकरीबन 4 से 5 सेकंड का वक्त होता है हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी को ट्यून करें या नहीं करें, और 4-5 सेकंड्स के अंदर अगर हमें हमारी मनपसंद की चीज़ आवाज़ या फिर बात ना मिले तो हम वहां से जा चुके होते हैं। तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा, लेकिन अगर किसी वजह से आप रुके हुए हैं तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएगा लाइव कॉल पर, अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा एहसास मिलेगा। हमारा और आपके दरमियान जो नंबर हुआ करता है 0421100101 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर हुआ करता है। सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101 लाहौर, इसके साथ साथ 4471 पर आपके पैगाम हमें मौसूल होते हैं। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर आप लिखते हैं 101 स्पेस देकर अपना नाम अपना पैगाम और उसे भेज देते हैं 4471

0: बातें तो बड़ी करते हो तुम, ये बताओ कर क्या सकते हो मेरे।
1: और इसके साथ साथ हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छा गाते हो, तो मैं ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैच यहाँ पे करवा लो, सदाकत वर्सेस मारिया शहजादी भी हो सकता है। तो मारिया अगर तुम सुन रही हो तो यहाँ पे आना है तुमने, और वही वाला ट्रैक सुनाना है जो सिग्नेचर ट्रैक है तुम्हारा, बहुत अच्छा गाती हो तुम अगर तुम सुन रही हो। और बाकी तमाम लोग जो भी बहुत अच्छा गाते हैं जरूर आइएगा, आपका आज लाइव मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई टॉपिक जरूर रखेंगे थोड़ी मोड़ी बात करने के लिए सदाकत के साथ, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अंदर की शख्सियत को जानने के लिए। शख्सियत लफ्ज से मुझे एक टॉपिक जहन में आ गया, काफी देर से मैं सोच रहा था 10 बजे से कि क्या टॉपिक रखा जाए आज, लेकिन अभी एक लाइन में टॉपिक सामने आ गया। मैं इसलिए लाइट्स बंद किया करवाया करता हूं कि मुझे दीवारें नजर ना आए, टॉपिक नजर आ जाए आप नजर आ जाए। सो बाय द वे जो टॉपिक है वो है कि इंसान की असल शख्सियत का अंदाजा कब होता है। अच्छा, ये टॉपिक भी पैरेलल हमारे साथ साथ चलता रहेगा, मोहब्बत में, नफरत में, गुस्से में या प्यार में किस तरह से उसकी शख्सियत का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि वो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ करती हूँ कैसे पता चले कि वाकई में वो उसकी असल शख्सियत ये है, है? सदाकत के भी दिल में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। ये ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना है FM 101 लाहौर। मेरा नाम रहमान अनवर, ये प्रोग्राम है अधूरी बातें, एवरी वेंसडे एंड थर्सडे मिडनाइट टिल 2 AM। और इसके साथ साथ बहुत सी मुलाकातें होती हैं, कुछ पता नहीं होता इस ट्रैक के उस पार आपसे।

0: अगला अंतरा हो जाए।
1: रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों।
2: अच्छा।
1: दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं, इश्क हित। रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों। दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही तकिया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर।

0: ओ माय गॉड मजा आया
1: मस्त हुआ।
0: इस ट्रैक के बाद वापस आते हैं, अपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मेरा नाम रहमान अनवर, मेरे साथ मौजूद है सदाकत हुसैन सादी और बहुत बहुत सारे ट्रैक्स हम इनसे सुनेंगे आज और आपकी लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पे ये जो लाइट है ये मुझे ब्लिंक होती हुई नजर आती रहनी चाहिए।

0: जी हाँ, रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 का बराह रास्त लाहौर का स्टूडियो है और मेजबान आपके साथ रहमान अनवर और मेरे साथ मौजूद हैं सदाकत हुसैन सादी। काफी अरसे से आपसे इस प्रोग्राम में मुलाकात नहीं हो रही थी। ये जो हम थर्सडे की रात 12 से 2 बजे वाला प्रोग्राम किया करते हैं, लेकिन आज काफी लंबे अरसे के बाद, मुझे लगता है कि 2 से 3 या फिर 4 महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आपसे बात हो रही है, जब भी आपसे बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा एहसास मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी बहुत ही ख़ास के साथ बैठा हूँ। सदाकत, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारा जो असल हिस्सा है, हमारी शख्सियत की जो जड़ है, वो कुछ ही जगहों पर वाज़े हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपनी ज़ात के ऊपर बहुत सारे लिबादे मुख्तलिफ किरदारों को निभाने के लिए ओढ़े हुए होते हैं।
1: ऐसे
0: कहीं पे हम बेटा होते हैं तो बेटे का किरदार अदा कर रहे होते हैं, कहीं पे हम माशूक होते हैं तो माशूक का किरदार अदा कर रहे होते हैं, कहीं पे हम हस्बैंड होते हैं, वालिद होते हैं तो वो किरदार अदा कर रहे होते हैं, या माँ जो है वो माँ का किरदार अदा कर रही होती
1: जो है, मसला उसके ऊपर ये बिल्डिंग्स ही है ना।
0: हाँ, तो ये मुझे लगता है कुछ ही जगह होती हैं जहाँ पे आप इन तमाम किरदारों से परे जो आपका असल है, आपका अंदर है, वो कहते ना अंदर दी जड़ी गल है ना, वो दस अपना अंदर खोल के बखा, मैनू मुझे अपना अंदर खोल के दिखाओ कि तुम्हारे अंदर क्या चलता है। तो वो कुछ ही जगह है, उनमें से ये दूसरी जगह है, पहली जगह कोई और है, वहां पे मैं अपना आप मुकम्मल खोल कर वाजे करता हूं, यानी मुझे सबसे ज्यादा सुकून वहां पे मिलता है। और दूसरी जगह ये है, इस माइक के सामने जब मैं आता हूं, तुम्हें पता है काफी देर से मैं तुम्हें कह रहा था, यार आज मेरे जहन में ना कोई बात करने की वजह नहीं है, यानी मेरे जहन में कुछ ऐसा चल नहीं रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, और जब हमारे जैसे लोगों पर चीजें अच्छी हो जाए ना तो हमारा ब्लैक आउट हो जाता है।
1: असल में एक रब्त होता है ना,
0: हाँ, तकलीफ के साथ ना एक बड़ा गहरा रिश्ता है हमारा, और ये जो दर्द है, ये जो एक गम है, ये अगर मैं ये समझता हूं कि ये अगर लोगों की, वो जो आर्टिस्ट है उनकी जिंदगी से चला जाए तो उनका आर्ट खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आज मुझे ना बड़ा बड़ा सुकून महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था, तो मुझे ना लग रहा था कि मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अचानक मुझे फिर वही बात कि वो चाहे बाहर आंधी तूफान बारिश हो रही है, चाहे बहुत ठंडी और बड़ी ताज़ा हवा है, वो जो बारिश के आने से या तो पहले

0: या फिर गांव में जाते हुए बारिश के कतरे जब मट्टी के ऊपर पड़ते हैं, वो जो मट्टी की और बारिश की पानी की अमेजेस से जो एक खुशबू बनती है, ओ माय गॉड, मुझे वो वाली खुशबू आज महसूस हो रही थी हर जगह। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लॉन है, ये जो इतना बड़ा खेत सा हमने बनाया है, ये जो गार्डन सा हमने बनाया है, ये बड़ा खूबसूरत एक मंजर भी पेश करता है, लेकिन उसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दूसरी जगह है रेडियो, यहाँ पे मेरा अपना अंदर खुलकर सामने आ जाता है, मेरे भी, कि अच्छा रहमान तुम्हारे अंदर ये भी है, तुम्हारे अंदर ये भी है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जात का जो असल पहलू है, तुम्हारी शख्सियत का जो असल पहलू है, वो कब सामने आता है, वो किस तरह से सामने आता है, किस चीज़ में वो ज़्यादा बेहतर पहुंच सकता है, यानी वो अपनी असल जो वक़्त है वो वहाँ पे महसूस करवाता है, क्या है तुम्हारी नज़र में, तुम्हारी ज़िंदगी में?
1: इसके लिए वो अपनी गजल में ही मैं जो
0: हाँ हाँ
1: निकल चुका हुआ है जो मेरे
0: हाँ हाथ से, मैं वही चाहता हूँ,
1: तो उसमें मैं आपको सुनाता हूँ।
0: हाँ, मतलब तुमने गजल के अंदर अपने उन एहसास को तुमने लिखा है।
1: नहीं, वो आपने स्टार्ट में शादी वाली बात भी की थी ना, तो वो भी इसमें कवर हो जाए।
0: हाँ ठीक है ठीक है,
1: ये पंजाबी की है गजल।
0: हाँ ठीक
1: तो
0: है,
1: मैं सुनाता हूँ, ये मेरी जो है। मैं पढ़िया इल्म जमाना नहीं,
0: मैं
1: पढ़िया इल्म जमाना नहीं,
0: अच्छा
1: सब सबक पढ़ाए कुदरत ने,
0: सब सबक पढ़ाए कुदरत ने,
1: कुछ रंगा दी पहचान लई, रंग सारे वखाए कुदरत ने,
0: हाय हाय हाय,
1: कुछ रंगा दी पहचान लई,
0: रंग सारे
1: सारे वखाए कुदरत ने, मेरे होकियां दी लय दे विच,
0: अच्छा
1: मेरे होकियां दी लय दे विच कई राग सुनाए कुदरत ने,
0: हाय हाय,
1: ते सबरे यकूब सिखावन लई कीते,
0: सबरे यकूब
1: सिखावन लई कीते,
0: हाँ
1: वक माओ जाए कुदरत ने,
0: हाय हाय, मतलब माँ से बेटे,
1: सबरे यकूब सिखावन लई कीते,
0: हाँ
1: वक माओ जाए कुदरत ने,
0: हाँ
1: ते वस खलकत दे उनु वड़ना नहीं,
0: अच्छा
1: वस खलकत दे उनु वड़ना नहीं, गुड़े जड़े चढ़ाए कुदरत ने,
0: गुड़े जड़े चढ़ाए कुदरत
1: ने, ते सादी दा सिरनामा लाके,
0: हाय
1: सादी दा सिरनामा लाके सब खेड खड़ाए कुदरत ने,
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: ते मकता है जेड़े डुबे अपने अंदर सादी,
0: जेड़े डुबे अपने अंदर सादी,
1: जेड़े डुबे अपने अंदर सादी राई पार लंघाए कुदरत ने,
0: हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह वाह,
1: राई पार लंघाए कुदरत ने,
0: यानी कि तुम्हारा जो अंदर का असल हिस्सा है वो शायरी में झलकता है, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा जो असल है, असल रंग तुम्हारी शख्सियत का तुम्हारी शायरी के अंदर वो आता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ बैठे हुए लोग अगर शायर ना हो या शायरी पसंद ना करते हो, तो तुम तो अपना असल इंसान जो है अंदर का वो नहीं दिखा पाओगे, या अल्फाज में भी बता देते हो। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुख्तलिफ लोग जो होते हैं, हर इंसान की, जैसे अभी इसने भी बात की सदाकत ने, कि मुख्तलिफ अप्रोचेज होती हैं, हर इंसान की मुख्तलिफ अप्रोच होती है, तो ये जो जगह है ना, ये मुझे अच्छी लगती है, जो अपना असल हिस्सा कहीं ना कहीं वो वजाहत से बताते हैं, उनका नज़र आता है। टेलीफोन लाइन पर एक और कॉल है, अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
0: मैं कब से इंतजार कर रहा था कि हमीद गुल साहब से ना बात नहीं हो रही, काफी अरसा हो गया है।
2: मैं सर कल आपका प्रोग्राम रास्ते में लाहौर से आ रहा था, और 11:30 के बाद आपका प्रोग्राम मैं नहीं सुन पाया।
0: अच्छा,
2: वरना जो आपने टॉपिक रखा था मेरे पास, आपने दूसरी दफा ये रखा था, वो मैं चलें, वो जब आप फिर रखेंगे फिर उस पर बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बात करेंगे। आज हमारे साथ हमीद गुल साहब, सदाकत हुसैन सादी साहब आए।
2: जी। सदाकत हुसैन सादी साहब की खिदमत में मैं उनको खुशामदीद कहूंगा, आदाब उनकी खिदमत में। बात यह है कि शकील आजमी ने कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, ये गाते भी हैं और खुद लिखते भी हैं।
0: हाँ, ये बहुत
2: ये बड़ा टैलेंट है, ये बड़ा। तो सदाकत साहब के लिए मैं वो शकील आजमी का एक जुमला इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ।
0: जी जी कहिएगा।
2: शकील आजमी ने कहा था कि शायरी पढ़ना मुश्किल काम है, शायरी बात है, शायरी होगी तो गुनगुनाया जाएगा ना। तो उन्होंने कहा कि शेर पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उससे मुश्किल काम अपना शेर पढ़ना। आप पहुंचे हैं बात?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया कि अपना शेर पढ़ना ज्यादा मुश्किल काम है।
2: इसलिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं शेर कह रहा हूँ क्या ये वाकई मेरा अपना है।
1: बड़ी बात है, बड़ी बात है।
2: अभी आप पहुंचे हैं बात तक?
0: नहीं नहीं, मैं वाकई में अब पहुंच गया हूँ।
2: इसमें कहीं आमेजिश तो नहीं है?
0: हाँ, ऐसा ही है,
2: मतलब किसी उस्ताद की जमीन का या ये ना।
0: हाँ,
2: तो वो, हाँ तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा उनका शेर। अगर आप मुझे दोबारा रिपीट करने, आपने शुरू में पढ़ा।
0: जी जी, वो जरा सदाकत, वो जरा शेर सुनाओ जरा अपना जो तुमने मुझे सेंड किया, मैंने आगाज में पढ़ा।
1: दिले शिकस्ता की बरमला आवाज हूँ मैं, वो वाला।
0: हाँ वही वाला।
2: दिले शिकस्ता की
1: बरमला आवाज हूँ मैं,
2: बरमला आवाज हूँ मैं,
1: अहबाब में मशहूर जुबान दराज हूँ मैं।
2: हाँ हाँ हाँ। क्या बात है, आपने बड़े खूबसूरती से इस मजमून को बांधा। आजकल मजमून का बड़ा झगड़ा चल रहा है।
0: बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही।
2: आजकल मजमून का उसमें हम नहीं जाएंगे।
0: हाँ हाँ हाँ।
2: इनकी नजर,
0: चलो माफ कर दो, चलो चलो चलो माफ कर दो हमीद साहब।
2: नहीं नहीं नहीं, आप सुने ना, मैं वो बात नहीं करना चाह रहा। मैं उनका शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा, जुबान दराज से।
0: हाँ
2: हाँ। वो मुझे अच्छा लगा।
0: मैं पहुंच गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ वहाँ तक।
2: एक नए पैराए में उन्होंने आप पहुंच गया बात को, बात की है। तो उनका शेर है ना कि अपने वो बनना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं, वो वाली बात है। तो मैं इनकी नजर एक कथा कर रहा हूँ अपना।
0: जी जी कहिएगा कहिएगा।
2: हाँ हाँ, के एक छोटी सी नज़्म इनके गोश गुजार करूंगा।
0: सुनाइएगा।
2: सदाकत साहब, एक कथा आपकी नजर के।
0: जी जी।
2: ये दिल उनको इनायत कर चुका हूँ।
0: अच्छा,
2: सदाकत साहब तक आवाज जा रही है?
0: जी जी आवाज जा रही है, जा रही है, जा रही है।
2: हाँ, ये दिल उनको इनायत कर चुका हूँ, जो करनी थी रियायत कर चुका हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
2: और मिसरा देखिएगा कि कोई ये रद्दगों से जाके कह दे, कोई ये रद्दगों से जाके कह दे, मैं ख्वाबों की हिमायत कर चुका हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: और एक नज्म, ये भी सदाकत साहब की नजर है
0: जी।
2: इसका उन्वान है कि सहर अंगड़ाई लेती है।
0: ठीक है।
2: सुबह सादिक का टाइम सहर, तो मैंने किसी को लिख के भेजी, मैंने कहा सहर अंगड़ाई लेती है, मैंने कहा ये सहर नहीं है, सहर है।
0: जी हाँ, वो सहर तो दूसरा होता है जो किसी के ऊपर हो जाता
2: है। नहीं, एक सहर लड़की का नाम भी होता है ना।
0: हाँ, ये तो बात आपकी सही है।
2: उन्होंने, मैंने कहा आप उस अंगड़ाई की तरफ मत चले।
0: हाँ, उस अंगड़ाई की तरफ मत चले जाइएगा कि शहर भी है और अंगड़ाई भी है, तो बात उसी की हो रही है।
2: आप मैंने, अच्छा ये बात मैंने इज़राइल तफन्नुन इसलिए की ताकि आपको मेरी नज़्म का मफ़हूम समझ आ जाए। लेकिन मैंने किस खूबसूरती के साथ इस बात को बांधा कि रात के माथे पे जब सुबह का झूमर जगमगाता है,
0: रात के माथे पर जब सुबह का झूमर जगमगाता है,
2: शब के शानों पर जब सुनहरी धूप की किरणें झिलमिलाती हैं,
0: अच्छा,
2: हवाएं गुनगुनाती हैं, नदियां शोर मचाती हैं,
0: ठीक है,
2: पंछी चहचहाते हैं, फूल मुस्कुराते हैं, तमन्नाएं रक्स करती हैं, सहर अंगड़ाई लेती है।
0: वाह वाह वाह वाह।
2: अब देखें कि सहर अंगड़ाई लेती है और ऐसे में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। मैंने अंगड़ाई को देखें किस खूबसूरती से आपके सामने रखा। अब आप इसे सहर कह लें, शहर की अंगड़ाई कह लें, किस चीज की अंगड़ाई कह लें।
0: सहर से पूछ लो मोहसिन कि हम सोया नहीं करते।
2: हाय हाय हाय हाय,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
2: मैं कल आपके साथ बड़ा, मैं एक जगह पे रुका भी, और मैंने ट्राई की दो तीन दफा आपको, बेल जा रही थी तो मैंने कहा रहमान भाई से बात नहीं हो रही, वरना मैंने सिर्फ आपको कल ये कहना था आपके टॉपिक पे जाते जाते वो कह देता हूँ कि जाओ लहसन ने बात की थी कि हमको मालूम है बात किससे है।
0: हाय, हमको मालूम है बात किससे है,
2: हमको मालूम है बात किससे है, हमको मालूम है कब नहीं बोलते।
0: हाय हाय, हमको मालूम है बात किससे है, हमको मालूम है कब नहीं बोलते।
2: कब नहीं बोलते,
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: इसकी जो इसका जो मतलब था ना, तो उसका वो था कि
0: बहुत अच्छा, जिनको दोबारा कहिएगा, एक बार दोबारा कहिएगा, मजा आया।
2: मैं इसका इसके मतलब के साथ आपको सुनाती हूँ। इसका मतलब है
0: जी,
2: मतलब मैं आपको दिलचस्प सब बातें भी सुना दूंगा। मतलब इसका ये है कि जिनको है बात का ढब वो नहीं बोलते।
0: हाँ, जिनको है बात का ढब वो नहीं बोलते।
2: हाँ, जिनको है बात का ढब नहीं बोलते, जर्फ है जो लबालब नहीं बोलते।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
2: और हमको मालूम है बात किससे है,
0: हमको मालूम है बात किससे है, ओ माय गॉड,
2: हमको मालूम है तब नहीं बोलते,
0: हमको मालूम है। ये आपने मुझे सुन करना है।
2: नहीं, वो मैं अर्जाउल हसन की, आप उसको लिखेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगी। इसमें मतले से एक बड़ी खूबसूरत मुझे बात याद है, किसी ने मुझे एक शेर लिख के भेजा कि उन्होंने कहा जी दो शेर भेजे, तो उन्होंने कहा मतला देखिएगा, तो मैंने नीचे लिख के भेजे कि ये मतला नहीं है, ये मतली है।
0: अच्छा, ना ऐसा ना, ऐसा ना किया करे, माफ कर दिया करे। माफ कर दिया करें, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते।
2: मैंने उनको नीचे लिख के भेज दिया ये मछली है, तो वो बड़े मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा कि अमीन साहब आपने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा आप अपने दोनों मिसरे देख लें, मुझे आपको समझ आ जाएगी कि आप पहले मिसरे में क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरे में क्या कह रहे हैं।
0: ये तो आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं ना अमित कुल सर।
2: नहीं नहीं, मैं तो नहीं समझता, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ सर।
0: नहीं,
2: मैं ये नहीं, यकीन करें, मैं अभी तक मैं ये जिस दिन आपने ये समझ लिया ना,
0: प्यार करते हैं, प्यार करते हैं,
2: बहुत कुछ सीख गए ना आप यकीन करिए, आप समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं सीखा।
0: ये
2: हकीकत बात है
0: जी।
2: आज तक आपके और हमारे जमाने में ये आईफोन और ये इंटरनेट नहीं था रहमान भाई
0: जी, बिल्कुल।
2: इसका मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। आज मैं आज ये सोचता हूँ, ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये बड़ी चीजें आ रही हैं जिनको हम देखते हैं, जो हमारी समझ से बाहर है, और बड़ी लेटेस्ट देखे ना जो आजकल की शायरी है, अभी सदाकत साहब ने वो मस्तू हुआ, उनको बड़ा खूबसूरत गुनगुनाया उन्होंने। बात यह है कि ये बड़ी चीजें आ रही हैं नई, और उनमें बड़ी खूबसूरत चीजें आ रही हैं सुनने में, ठीक है ना। तो और जाते जाते चले एक कथा सदाकत साहब की नजर करके इसी के साथ
0: जाएगा।
2: आप दोनों की नजर है कि बड़ी पुरकैफ यारी हो रही है,
0: बड़ी पुरकैफ यारी हो रही है
2: सदाकत साहब, बड़ी पुरकैफ यारी हो रही है, मोहब्बत दिल पे तारी हो रही है।
1: वाह जी वाह, क्या बात,
0: मोहब्बत दिल पे तारी हो रही है,
2: तारी हो रही है। और देखें इस प्यारे को कि जुलेखा तेरी यादों से मुसलसल,
1: मेरी तबीयत भारी हो रही है,
2: तबीयत मेरी भारी हो रही है,
0: तबीयत मेरी भारी हो रही है। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है
2: ना, ठीक है, आप क्यों हो रही है,
0: अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं, ठीक है,
1: उतारा उतारो मुझे।
2: नहीं, तहजीब हाफी ने सही कहा था,
0: ठीक कहा था,
2: तेरी बातों से उकता गया हूँ, अब इस झूले में चक्कर आ रहा है।
0: बहुत शुक्रिया अमित गुल साहब, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा।
2: जज़ाकअल्लाह,
0: थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई
0: जी। वालेकुम अस्सलाम।
3: ये मेरे भाई जो सरकार बुले चार ये दर से आए हुए हैं
0: जी जी, तो सदाकत हुसैन सादी साहब
3: जी जी, तो मैं भाई की नजर में एक शेर पेश करूंगा बुले चार सरकार का।
1: जी जी जी
0: जी जी, कहिएगा।
3: चल बुलिया चल उठे चलिए, जिथे वस्ते अकल्या ने, ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई सानू मने।
0: अच्छा अच्छा।
3: राती जागी करी इबादत, राती जागन कुत्ते, भौंकन तो ए बाज ना आवन जारूरी ते सुते, और मालक दा डरे नहीं छड़ दे, पावे खावन सो सो जुते। ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਈ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ।
0: ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ
3: ਸਰ। ਸਰ ਅਗਰ ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਸਾ ਛੋਟਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੋ ਏਕ ਔਰ।
0: ਜੀ ਜੀ ਸੁਣਾਈਏਗਾ।
3: ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਉੱਠਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਹੀਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ
0: ਵੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।
3: ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨੀ ਗੱਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗੱਲੇ ਵੇਖੇ,
0: ਉਹ
3: ਜਿੰਨਾ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਦੀ ਬੁੱਲਿਆ।
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
3: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
0: ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਪੇ ਆਪਕੀ ਕਾਲਸ, ਯਾ ਅਬ ਮੁਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ।
4: ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ,
0: ਕੈਸੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕੇ, ਆਪ ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ?
4: ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ
0: ਜੀ। ਕਹੀਏ ਗਾ
4: ਅਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਅਸ਼ਾਰ।
0: ਜੀ ਜੀ ਸੁਣਾਈਏਗਾ ਸੁਣਾਈਏਗਾ, ਨਾਮ ਬਤਾਈਏਗਾ ਆਪਣਾ।
4: ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਬਲੋਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ।
0: ਜੀ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦਿਦ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਤਾਈਏਗਾ ਸੁਣਾਈਏਗਾ।
4: ਨਸੀਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਆਪਕੀ ਨਜ਼ਰ।
0: ਜੀ ਸੁਣਾਈਏਗਾ।
4: ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ,
0: ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ
4: ਵਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ,
0: ਵਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ,
4: ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਜਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।
4: ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੀ ਪੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ।
0: ਵਾਹ।
4: ਕੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਓ ਠੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ,
0: ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਓ ਠੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ।
4: ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤਿੱਕਰ ਜਾਵਣੇ,
0: ਹਾਂ
4: ਉਹਨੇ ਤਿੱਕਰ ਠੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
0: ਅੱਛਾ।
4: ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਢੇ ਧੱਸਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਾਫਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਦਰਿਆ ਦਿਆ ਪਾਣੀਆਂ।
0: ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।
4: ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਦੋਵਾਂ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਸਦਾਕਤ, ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਮਸੇ ਕੁਛ ਔਰ ਸੁਣਾ ਜਾਏ, ਦਿਲ ਭਰਾ ਭਰਾ ਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਝੇ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ।
1: ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਏ, ਨੀਅਤ ਨਾ ਭਰ ਜਾਏ।
0: ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਨੇ ਵਾਲੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕਰ ਦਿਲ ਕੀ ਜਾਨਬ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੇ ਭਰ ਜਾਤਾ ਨਾ, ਇਸਮੇ ਐਸਾ ਸਾਥ ਕੇ ਅਜੀਬ ਰੰਗ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਅਸਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਸਕੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਉਨ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਔਰ ਉਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਂ ਨੁਮਾਇਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮੇਂ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਮੁਝੇ।
1: ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।
0: ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ ਮੁਝੇ, ਯੇ ਸੁਣਾ ਕਰ ਬਤਾਨਾ ਤੁਮਨੇ ਮੁਝੇ।
1: ਚਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ।
0: ਹਾਂ
1: ਨੀਯਤ ਸ਼ੌਕ ਭਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੀਂ,

0: तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद,
1: आज देखा है
0: तुझको, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन
1: गुजर न जाए,
0: गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं,
1: तू भी दिल से
0: उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, आओ कुछ देर
1: बहुत अच्छा
0: रो ही ले ना सिर, आओ कुछ देर रो ही ले ना सिर,
1: अच्छा,
0: फिर ये दरिया
1: बहुत अच्छा
0: उतर न जाए कहीं,
1: फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, अच्छा
0: तू

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: आरज़ू है के तू यहाँ आए। आरज़ू है के तू यहाँ आए और फिर लौट
0: करना
1: कर न जाए कहीं।

0: उतर न जाए कहीं नियते शौक भर न जाए कहीं।
1: कमाल कमाल कमाल, बहुत बहुत बहुत खूबसूरत सदाकत। मुझे ना मज़ा आया मुझे ये ट्रैक। मेरा दिल चाह रहा है कि इसको ज़रा यहाँ से भी ज़रा मैडम की आवाज़ भी ज़रा, दिल चाह रहा है। इसके बाद जब लौट कर वापस आएंगे ना, तो जो आपकी कॉल्स मुझे मिल रही हैं वो तो रिसीव करते रहेंगे, लेकिन मैंने फेसबुक पे अपनी पोस्ट भी अपलोड की हुई है, आप चाहें तो उसको जाकर लाइक कर सकते हैं, चाहे काफ़ी देर हो गई लेकिन लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने होने का एहसास से लगेगा। facebook.com/fm101 लाहौर।

0: Alright ji, once again welcome back. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے. میزبان رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ ہے. آپ کے میسیجز بھی موصول ہو رہے ہیں اور آپ کی کالز بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں. آپ کی لائیو کالز پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. ٹیلی فون لائن پہ دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ کالر کون ہے. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں
0: جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں جی؟ کیا نام ہے آپ کا؟
1: جی شکر الحمدللہ.
0: جی میری جان بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیں, آباد رہیں, مسکراتے رہیں جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سلامت رہیں, آباد رہیں. ٹیلی فون لائن پہ ایک اور کال. السلام علیکم جی. اچھا اچھا صداقت, زندگی میں کبھی کسی ایسے لمحے سے گزرے ہو جب تمہیں ایسا لگا ہو کہ یار یہ جو وقت ہے نا یہ بہت مشکل وقت ہے. جب تک انسان اس وقت سے گزرتا نہیں ہے نا اس کو پتہ نہیں ہوتا گزرنا کیسے. لیکن جب تمہارے اوپر یہ وقت آیا تو تم نے اس وقت کو کیا وقت آیا ہے ایسا کبھی؟
2: آتے رہتے ہیں اس طرح کے وقت.
0: تو ایسے وقت میں کیا کرتے ہو؟ تمہاری سب سے پہلی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ کس طرح سے تم اس مشکل پہ, اس مشکل وقت پہ قابو کس طرح سے پاتے ہو؟
2: وقت تو ہر شخص پہ اس طرح کا بنتا ہے.
0: آتے رہتے ہیں,
2: آتے رہتے ہیں, یہ فیز ہوتے ہیں زندگی کے, اس میں آنا جانا اس طرح کے وقت کا لگا رہتا ہے. لیکن اس طرح کا جو ٹائم آتا ہے وہ آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بٹیاں ہوتی ہیں جو برتن مٹی کے بنانے والی جو ہوتی ہیں, کمہار جنہیں کہتے ہیں وہ بناتے ہیں برتن. تو جب وہ برتن کو بنا لیتے ہیں نا, جب اس کو ایک گیون جو ہوتا ہے ٹمپریچر ہوتا ہے آگ کا, اس پہ سیک لیتے ہیں اس کو, اس کے بعد اس کو نکالتے ہیں باہر نکال کے, تو وہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا ان کا جو سپرویژن جس کی چل رہی ہوتی ہے, تو وہ دیکھتا ہے گھما کے چاروں طرف سے برتن کو کہیں سے کوئی کچا تو نہیں رہ گیا, اگر کوئی اس میں کمی پیشی جسے پنجاب میں رڑک کہتے ہیں وہ, اس کو دوبارہ پھر سے آگ میں جھونک دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ پھر سے جھونک دیتا ہے. تو سیم یہی جو پروسیجر نا, یہ جو آپ کی بات ہے, قسمت ہمارے ساتھ کرتی ہے کہ مشکلات جو آتی ہیں نا وہ ہمیں جو کمی کوتاہی میں مضبوط انسان بنانے میں جو کوئی رڑک رہ گئی ہوتی ہے قدرت, اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اس مشکل میں ڈالا جاتا ہے.
0: اور تم اس چیز کو مان کر چلتے ہو کہ اگر کوئی بھی مشکل آئے تو دراصل مجھے نکھارنے کی کوشش کی جا رہی
2: ہے,
0: اور یہ پوزیٹو ایٹیٹیوڈ تمہیں اس وقت سے
2: گزار دیتا ہے. یہی بات, یہ اصل بات ہے.
0: بڑی بڑی بڑی خوبصورت بات ہے. انسان کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس نظر سے, اس طریقے سے سوچ نہیں پاتے.
2: دیکھیں نا آپ, اس کے بعد اس مٹی کا مقام و مرتبہ بھی دیکھیں کہاں چلا جاتا ہے. اب آپ عام مٹی یا اس کو اس ٹیمپریچر سے گزارنے سے پہلے جو مٹی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے,
0: ہاں ہاں,
2: اس کو پانی میں پھینکے وہ فوری میلٹ, اس میں گھل
0: ختم ہو جاتی ہے,
2: میلٹ ہو جائے, اس میں زم ہو جائے گی,
0: زم ہو جائے گی.
2: لیکن اس ایک پروسیجر سے گزارنے کے بعد جو وہ بن جاتی ہے, اس کو پانی میں 100 سال بھی پھینک دیں وہ اپنی شکل نہیں بدلے گی.
0: واہ واہ,
2: پڑی رہے گی وہ اس میں ویسے کی ویسے.
0: مطلب کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو ہمیں پریشان نہیں ہو جانا چاہیے, ہمیں یہ والی سوچ اپنانی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل وقت سے, اس پریشانی سے گزارا جا رہا ہے بہتر بنانے کے لیے.
2: دیکھیں نا اس کو میں آپ کو اس سے بھی نارمل چیز میں بس سمجھاتا ہوں. بچہ اگلی کلاس میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ پاس ہو جاتا ہے.
0: پاس ہو جاتا ہے نا.
2: کیا نہیں ہوگا تو اس کو ٹیچر کہے گا آپ اسی کلاس میں پھر سے سال لگاؤ گے. تو یہ جو مسائل ہوتے ہیں, یہ پریشانیاں, اگر ایک ہی آپ پہ ریپیٹڈلی بار بار ایک کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو امتحان جو اللہ آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے وہ آپ سیکھ نہیں رہے, وہ آپ دوبارہ پھر سے کہہ رہے کہ مجھے اس کلاس میں ایک سال اور لگانا. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کو سیکھ جاؤ گے, جو آپ کو نیچر سکھانا چاہ رہی سیکھ جاؤ گے, تو آپ کو آٹومیٹکلی نیکسٹ کلاس میں جانا ہی پڑے گا.
0: ہاں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ یہ جو فارمولا ہے نا جو آپ نے ابھی بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ انسان کی جو زیادہ اس کی بہتری کے لیے یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں, یہ جو مختلف طرح کے اوقات بنائے ہوئے ہیں, کبھی مشکل کبھی آسان, کبھی بہت زیادہ مشکل کبھی بہت زیادہ خوشی والا لمحہ, کبھی بہت زیادہ غم والا لمحہ, مختلف طرح کے رشتوں کے مختلف رنگ.
2: اس پہ مجھے نا ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی.
0: ہاں ہاں,
2: تو وہ نا मैं शिकार पे गया, मेरे दोस्त रेंजर्स वाले एक दोस्त हैं, तो वो भी शेर व शायरी से बड़ा ज़ौक रखते हैं, तो एक शेर सुनाया मुझे, वो कहते कि भाई आपकी जो शायरी है ना वो पश्तून है।
0: अच्छा, उनकी शायरी
2: पेशावर नहीं, वो पश्तून। तो उनके पास एक शायर हैं बाबा, बड़े मशहूर हैं, उनका मुझे गालबन नाम भूल गया। तो उनके बारे में बात बताने लगे, कह रहे कि उनके पास हम बैठे हुए तो उन्होंने जो है ना ये आपकी बात के कभी ज्यादा कभी कम वाली
0: कभी
2: बात
0: ज्यादा कभी कम
2: वो बात पे, तो उस पर मुझे याद आई ये बात। तो कह रहे हैं कि वो उनके पास हुजरे में उनके जो भी रुफका थे, अहबाब थे, हल्का अहबाब के लोग, वो बैठे हुए उनके पास। तो सर्दियों की दोपहर थी, तो वो संतरे माल्टे जो होते हैं किन्नो, उनके वो जालियाँ आ गई।
0: ठीक है,
2: तो उनके जो करीबी थे दोस्त, उन्होंने कहा जी कि बाबा जी तो इसी सानू दो फरन वंडो, उन्हें सा दो ना सी खाइए सारे। तो वो बड़ी खूबसूरत बात वो कहते हैं, कहते हैं कि रब वाली वंड करा के बंदे वाली वंड, वो कहते हैं कि रब वाली वंड करा के बंदे वाली वंड करा। तो वो बंदा होता है वो कहता है कि जी तुसी जो ना सो, उसके दिल में आता भी रब वाली कहोगे तो बाबा खुशी मिल जाएगा, वो कहता नहीं तुसी रब वाली वंड करो। उसे कहता है शायर जो बाबा जी, उनको कहता है कि रब वाली वंड करो।
0: अच्छा,
2: वो कहता अच्छा चलो ठीक है, फिर कहता उरे आइयो सारे, कहता छुरी भी ले आओ, किसी को आधा करके दे देता, किसी को पांच दे देता, किसी को दो दे देता, किसी को एक दे देता।
0: हाँ, रब
2: देता ही नहीं है,
0: रब ऐसे
2: किसी को देता ही नहीं है।
0: हाँ, ऐसे ही।
2: तो वो जब बांटने के बाद वो जो रह जाते वो कहते कहता है कि तुसी जे क्या होता ना बंदे वाली करो तो मैं सारे बराबर देनी तुसी क्या रब वाली वंड करो तो रब की वंड नहीं। देखे ना अपने सराउंडिंग में इर्द गिर्द देखे आप, नजर दौड़ाएंगे तो किसी के पास है ही नहीं। लेकिन लेकिन जिसके पास नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास है वो उसको कमतर समझे, हकीर समझे। वो आगे जो हमने इम्तिहान वाली बात की ना, वो अल्लाह ताला खुद कह रहा है ना कि मैं किसी को दे के आजमा रहा हूँ, किसी से लेकर
0: आजमा रहा हूँ।
2: तो वो जाहिर सी बात है जिसके पास कुछ नहीं है उसका भी तो रब वही है ना।
0: बिल्कुल ऐसे।
2: तो ये बात है असल कि जो जहाँ पे है वो किसी प्लान के तहत है, वो कुदरत
0: प्लान के तहत,
2: कुदरत के प्लान के तहत है, वो किसी बंदे के प्लान के तहत नहीं है।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही।
2: अपनी बहुत पॉजिटिविटी में बंदे को रहना चाहिए।
0: यस यस यस, बहुत बहुत खूबसूरत बात ये तुमने बोली है मुझे। अब मुझे ये लगने लगा है कि तुम्हारे अंदर जो रंग है ना, वो जो किसी ने ये तुम्हें लकब दिया है, ये कहीं ना कहीं तुम्हें तुम चीज़ों का निचोड़ निकालने लगे हो और कुछ ऐसी बातें तुम्हारे अंदर आने लगी हैं जो तुम्हें बहुत से मुख्तलिफ लोगों से, बहुत से आम लोगों से ख़ास बना रही हैं और मुनफरद बना रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये तुम्हारी सोच, ख़ास तौर पे तुम्हारा ये जो मुश्किल वक्त से गुजरने वाली सोच। मैं ना इंसान को बाज़ औक़ात परखने के लिए ना कुछ लफ्ज़ पूछता हूँ, कभी कभी कोई सवाल
2: पूछ लगाते
0: हैं। नहीं नहीं, टेस्ट नहीं, सवाल। मैं उसको जज करने के लिए नहीं, मैं दरअसल उसको जानने के लिए।
2: नहीं, वो भी अच्छी बात है।
0: वो क्या समझता है,
2: फेज क्या है जिंदगी का, वो कैसे इसमें कुछ सुनने वाला
0: क्या करेगा, वो क्या करेगा इस तरह के लम्हों से अगर गुजरेगा तो वो क्या करेगा। हमने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी देखे हैं जो अगर किसी तरह की फिल्म में अगर इस तरह का कोई रोल आ जाए जो बहुत तजलील करवाने वाला हो, जिसमें बहुत जिल्लत मिल रही हो आपको, वो बहुत बेहतर और अहसन तरीके से उसको निभा रहे होते हैं। यानी वो उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तारी कर लेते हैं कि ये मैं हूं, यानी कि मैं इस फेज में रह रहा हूं। अगर मैं ये समझता हूं कि अगर वो एक्टर्स होकर ये तमाम चीजें कर रहे होते हैं तो अगर हमारे ऊपर रियलिटी में ये हमें एक्ट दिया गया है तो हम क्यों उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्यों नहीं निभाते। हम उसमें रोते क्यों रहते हैं अगर हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है, हम उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद उससे मांगते क्यों नहीं, हम अपने आप को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ चीजों की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हमारी गिनती जो होती है वो हमेशा एक से शुरू होती है, हम एक से गिनती क्यों नहीं शुरू करते। हम वो सामने जो घर है वो देखो कितना जबरदस्त बना हुआ है, हम उसको देखकर बहुत सारे हसद के ऐसा सात एलिमेंट्स अपने अंदर क्यों महसूस कर रहे होते हैं, अपनी जात के अंदर क्यों नहीं देख रहे होते। बहरहाल ये जिंदगी के साथ साथ ये तमाम चीजें चलती रहती हैं, इंसान मुख्तलिफ औकात में सीखता रहता है। बहरहाल मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं इस वक्त कि तुम्हारे अंदर जो लिखने का हुनर है, ये जो तुम लिखते भी हो, क्योंकि तुमने मुझे बताया कि तुम शायरी तुम अभी सुना भी रहे हो मुझे, लिखते भी हो, स्क्रिप्ट भी राइट करते हो, तुम बहुत कुछ करते हो, ये लिखने का हुनर तुम्हारे अंदर किस तरह से आया? क्योंकि हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, तुम्हारे अंदर ये वाला फेस कैसे आया, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम एक शायर भी हो और तुम एक लेखक भी हो और तुम एक सिंगर भी हो, ये तुम्हें एहसास कैसे मिला?
2: बस ये चीजें जो है ना वो एक इंग्लिश का लफ्ज़ बाई वन गेट वन फ्री, तो उस तरह से जो है ना ये अल्लाह की अता होती है।
0: ऐसे मुश्किल है ऐसे ये लफ्ज़ तुमने अब गलत इस्तेमाल किया। बाई वन गेट वन फ्री कैसे हो सकता है? यानी कि अगर मैं इतना अच्छा पढ़ रहा हूँ तो मैनू शायरी लिखनी क्यों नहीं आ रही? मैनू ये दस यार।
2: बस वो आपको कहा ना कहता
0: ये अल्लाह की अता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर ये कैसे, तुम्हें महसूस कैसे हुआ ये लफ्ज़ तुम्हारे ऊपर उतर रहे हैं और तुम लिख रहे हो?
2: बस वो कुछ लोग होते हैं कि वो खेंचाता नहीं करता शायरी में, खेंचाता नहीं भी चलती। आजकल आप देखते होंगे कि कई लोग हैं।
0: हाँ अभी चली भी थी थोड़ी सी,
2: चल जाती। तो असल में चीज़ जैसे इकबाल, लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल साहब का शेर है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। शायरी स्क्रिप्ट कह लें, शायरी कह लें, तहरीर कोई भी कह लें, कोई कोट कह लें, बामायनी और बावजन और बा असर तभी होता है जब दिल से निकल रहा हो, अंदर से निकल रहा हूँ।
0: यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर ये जो
2: मैं ना धक्का नहीं करता, मैं जोर आजमाई नहीं करता। अब मैं आपको मेरी एक चीज़ एक लिखी हुई है, गजल ही कह लें, वो मेरी कम से कम ढाई से तीन साल में जाके पूरी हुई है। ढाई से तीन साल में तो वो मैंने कभी भी उस पर जोर आजमाई नहीं की। एक उसका फेज था, वो आया हुआ था मेरे पास, उसके कम से कम दो ढाई साल के बाद अगला फेज।
0: अच्छा मेरा ना दिल चाह रहा है वो सुनने का, जरा सुना।
2: अच्छा
0: नहीं नहीं मैंने सुननी है।
2: डीप जा रहे?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वाकई में मैं दरअसल वो चाह रहा हूँ कि तुम्हारा वो वाला फेज भी देख लूँ। और फिर जो ढाई साल के बाद तुमने उसको मुकम्मल किया, मतलब वो कौन सा फेज आया, वो किस तरह से तुमने किया, मैं दरअसल वो जानना चाह रहा हूँ। हाँ मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुमसे अब ये देखना है, मैंने अब मुझे ये जानना है, मुझे ये महसूस करना है कि जब लोग खेंचातानी नहीं करते, अपनी मर्जी से उसको पूरा होने देते हैं, तो वो कैसे बनती है। मेरा दिल चाह रहा है अब तुम्हें तुमसे जानने का। कोई एक शेर सुना दो बेशक उसका।
2: मैं निकालता हूं, पूरी चीज निकालता हूं
0: उसकी। अच्छा मतलब कि शायरों के अंदर जो है वो, अच्छा ये भी है कि ये जो लफ्ज़ होते हैं तुम ये सामने मोबाइल करके लिख रहे होते हो उस पे, या डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें चल रही होती हैं?
2: दिमाग में उतरनी शुरू होती है ना, तो फिर उनको किसी पेज पे कह लें, किसी
0: पेज पे उसी वक्त लिखते
2: लिख लिया जाता है उस पे।
0: अच्छा यानी उसको जाने नहीं देते, क्योंकि अगर वो चला जाए ना,
2: वो ख्याल
0: मैंने, हाँ वो ख्याल अगर चला जाए तो फिर वो वापस लौट कर कभी नहीं आता। मेरे साथ तो अक्सर प्रोग्राम में भी ऐसा होता है कि एक ख्याल आ रहा है, लेकिन अगर मैंने उसको बयान नहीं किया, अगर मैंने उसको किसी तरह से उसमें शामिल नहीं किया, तो वो कहीं भाग जाता है या भक्त से वो उड़ भी जाता है। ऐसा होता है मेरे साथ। तो हमें जो है बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर अगर आ रही हूँ। मैं बहुत बहुत अरसा पहले जब मुझे लिखने का थोड़ा थोड़ा शौक हुआ, वैसे मैं भी थोड़ी सी राइटिंग करता हूँ, लिखने का मुझे भी थोड़ा सा शौक है, शायरी नहीं वैसे ही, मतलब कि अपने एहसासात, अपने ख्यालात, अपने आप को बेहतर जानने के लिए, बेहतर समझने के लिए मैंने एक डायरी बनाई हुई होती थी। और ये वक्त है फैसलाबाद वाला, सदाकत। अच्छा, वो फैसलाबाद वाला वक्त है। और उस वक्त में मैं वो डायरी अपने पास रखता था हर वक्त, यानी अंदाजा लगाओ कि हर वक्त वो डायरी मेरे पास होती थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले जब ये मैं प्रोग्राम्स कर रहा था तो मुझे ये इंस्ट्रक्शंस थी कि तुम्हारे जहन में कोई भी ख्याल आए, कोई भी एहसास आए, कोई भी ऐसी चीज जो तुम रोजमर्रा रूटीन में जाते हुए देखते हो, तुम उसको फील करो, तो तुमने उस एहसास को लिखना है, तहरीर करना है फौरन। पहले मैंने सोचा कि अगर मैं उस एहसास को लिखने की बजाय मैं उसको याद कर लूं, बाद में जाके कहीं पे लिख लूंगा आराम से घर में जाके, तो कोई मसला नहीं है, याददाश्त मेरी बड़ी स्ट्रांग है। पहले ऐसे मैं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये एहसास मिला कि नहीं, एड्डा तेज़ नहीं है तू, इतनी तेरी याददाश्त स्ट्रांग नहीं है। वो ख्याल जो तुम्हारे जहन में आया, वो जो एहसास उस पल में तुमने महसूस किया किसी चीज़ को देखकर, किसी हादसे को देखकर, किसी भी बात को देखकर, वो तुम्हें उसी वक्त रहेगा। जैसे ही तुम उस जगह से कहीं और ट्रैवल करोगे तो वो एहसास भी ट्रैवल कर जाएगा। हाँ वो एहसास भी ट्रैवल कर जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे ये नसीहत हुई कि मैंने लिखना है। अब मैं सोचूं कि यार मैं मोबाइल में लिखने के लिए वो बटन्स टाइप करूंगा और वो तमाम चीज़ें करूंगा तो वो एहसास फिर उड़ जाएगा। तो मैंने फिर वो डायरी रखी, क्योंकि मेरा ना पेंसिल के साथ ये जो बॉल पॉइंट है, ये जो लिखने का है, उंगलियों के साथ एक खास तसलसल है कि जब मैं लिखने लगता हूं तो वो जो एहसास होता है वो और ज्यादा मजबूत होके मुझे महसूस हो रहा होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होके मुझे दिख रहा होता है। फिर मैंने अपने साथ एक डायरी रखी, एक पेंसिल रखी, तो जैसे ही मुझे किसी भी वक्त में, किसी भी जगह, किसी से बात करते हुए कोई भी ख्याल आता था तो मैं लिखने लगता था, तो सामने वाला ये समझता था कि यार ये अभी मुझसे बात कर रहा है, अचानक से इसने डायरी निकाली है बाहर तो ये लिखने लग गया है। तो वो मुझे कहते थे ये डेथ नोट तो नहीं लिख रहे हैं
2: क्या? नहीं क्या ये नुस्खा तहरीर कर
0: सुना यार अगर मिली है तुझे। सुनाओ। अच्छा ये वो वाली गजल है जो ढाई साल में पूरी हुई है या ढाई साल बाद पूरी हुई?
2: ढाई साल बाद जाके।
0: यानी इसको कुल अरसा कितना लगा?
2: एक दो तीन साल लगे होंगे।
0: तीन साल लगे, ठीक है। सुनाओ यार, ये तो यार मैं भी सुनना चाहता हूँ और सुनने वाले भी सारे सुनना चाहते हैं।
2: ये थी कोई उस तरह की चीज। अच्छा
0: हाँ।
2: रख रखाव से परे बेनियाज था मैं।
0: अच्छा मुझे ना आराम से सुनाना है तुमने क्योंकि मैंने तुम्हारे ना, मैं तुम्हें जानता भी हूँ, यार भी हैं हम, दोस्त भी हैं, तो मैंने देखना है कि ये कौन सा फेज है। रख रखाव से
2: परे
0: परे
2: बेनियाज था मैं।
0: रख रखाव से परे बेनियाज
2: बेनियाज था मैं।
0: मुझे नहीं इन चीजों का कोई शौक था।
2: अहले वफा में मशहूर मिसले अयाज था मैं।
0: हाँ अच्छा, अहले वफा में मशहूर
2: मिसले अयाज था मैं।
0: मिसले अयाज था मैं, वो जो बादशाह का अयाज। अच्छा
2: महमूद अयाज,
0: महमूद अयाज वाला
2: था। सर बहुत मेरे भी अंदाजे बयां में।
0: अच्छा
2: था सर बहुत मेरे भी अंदाजे बयां में कि दिले शिकस्ता की नोहागरी की आवाज था मैं।
0: कि दिले शिकस्ता की नोहागरी की आवाज था मैं। अच्छा
2: चुपचाप ही सह लेता था जमाने की सख्तियां।
0: चुपचाप ही सह लेता था
2: जमाने की सख्तियां।
0: ठीक है।
2: गोया जब्त के नए बाब का आगाज था मैं।
0: हाय हाय हाय, ये दोबारा कह दो।
2: चुपचाप ही सह लेता था जमाने की सख्तियां।
0: हाँ।
2: गोया जब्त के नए बाब का आगाज था मैं।
0: जब्त के नए बाब का आगाज था मैं। ओह माय गॉड। अच्छा इससे पहले भी एक बाब होगा कोई।
2: ना आशना रहा मैं खुदी के रंग से।
0: ना आशना रहा मैं खुदी के रंग से।
2: मोर था गिद्ध था के बाज था मैं।
0: अच्छा अच्छा है, ठीक है ठीक है, जान दे ठीक है।
2: ना आशना रहा मैं खुदी के रंग से।
0: हाँ
2: मोर था गिद्ध था के बाज था मैं।
0: अब ये यकीन करें इन तीनों जानवरों के अंदर ना अलग अलग खसूसियात हैं, तो मैं महसूस कर भी रहा हूं।
2: फिर यूं हुआ कि गर्दिशे दौरान ने आ लिया।
0: फिर यूं हुआ कि गर्दिश से दौरा ने आ लिया।
2: आ लिया सब सख्तियों और तलखियों को खुद में समा लिया।
0: ठीक है।
2: चारा घर ना हमदर्द था कोई मेरे इर्द गिर्द।
0: अच्छा
2: काम आ रहा था वजीफा ना ही कोई विर्द।
0: काम आ रहा था कोई
2: वजीफा ना ही कोई विर्द।
0: हाँ काम आ रहा था
2: वजीफा ना ही कोई विर्द।
0: ठीक है।
2: कुछ हाथ का दिया हुआ फिर काम आ गया।
0: हम्म।
2: काम आ रहा था वजीफा ना ही कोई विर्द। कुछ हाथ का दिया हुआ फिर काम आ गया। मेरे चारा घर के होंठों पे मेरा नाम आ गया। और मसीहा के अंदाज ना पूछिए जनाब। मसीहा के अंदाज ना पूछिए जनाब। जब भी पुकारा मैंने सरे शाम आ गया।
0: ठीक है ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त यार, मेरा दिल चाह रहा है कि लोग जो है ना वो अब तुम्हें दोबारा सुनना चाह रहे हैं कि कोई एक ट्रैक खूबसूरत सा। अभी तुमने मेहंदी हसन की तुम बता रहे थे मुझे, और उनके साथ
2: मैडम नूर जहां।
0: हाँ सुनाओ सुनाओ
2: वो सुनाए फिर से।
0: हाँ वो सुनाओ।
2: चले
0: ले जी, अब एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक दोबारा सुनते हैं सदाकत हुसैन सादिक की आवाज में, मेहदी हसन।
2: नहीं वो आज हम मिले ना उस पे ही सुनाते हैं।
0: अच्छा चल ठीक है सुना दे।
2: आज तुसी गए मिल
0: आया
2: साडा।

ਜਦੋਂ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਗਈ ਅੱਖ

सीने विच ठंड पाई प्यार वाली अग ने, सीने विच ठंड पाई प्यार वाली अग ने, खुशियां तो प्यारे सानू तेरे गम लगने, खुशियां तो प्यारे सानू तेरे गम लगने, तेरे गम लगने।

बहुत बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल सदाकत, मज़ा आया ये सुनने का। एक ट्रैक सुनते हैं मैडम नूरजहां की आवाज़ में, दोबारा से मेरा दिल चाह रहा था ये वाला ट्रैक सुनने का, और ये आप सबको सुनने का मज़ा आएगा। इसके बाद वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहमान अनवर, और मेरे साथ मेरे मेहमान कसूर से स्पेशल तशरीफ़ लाए, बहुत ज़बरदस्त सिंगर और राइटर भी हैं, शायर भी हैं, मज़ा आता है इनसे बात करके, सदाकत हुसैन सादी।

ये सोचकर कि अभी सीखने के अमल में हूँ, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ़ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक तो ये वाला ट्रैक लगाऊं लास्ट पे और एक नज़्म जो है वो आपको सुनाऊं। लास्ट पे जाते हुए लम्हात होते हैं और उसमें ये वाली नज़्म आपको सुनना बहुत अच्छा लगेगा।

ये तालमेल जरा आपने देखना है, ये जो पंजाबी पंजाबी ट्रैक है उस पे ये नज्म मैं उर्दू की पढ़ूंगा। मैंने जो ही कमरे का दरवाजा खोला, देखता क्या हूँ, कमरे की जो चीज जहाँ थी वैसी की वैसी धरी हुई है। ड्रेसिंग टेबल के कोने पर सेफ्टी पिन के डिब्बे का ढकना बस यूं ही गिरा पड़ा है। हेयर ब्रश के दांतों में कुछ बाल हैं तेरे फंसे हुए, सेंट की शीशी खुली हुई है, तेरे पर्स के अंदर से एक शख्स की फोटो उसके ऊपर गिरी हुई है। मेरी चप्पलें बालकनी के दरवाजे की ओट में उल्टी पड़ी हुई हैं। मेरी घड़ी और तेरा कंगन तकिए के नीचे से होकर फर्श पे औंधे पड़े हुए हैं। टीवी सेट भी जब से यूं ही खुला हुआ है। कैन के सिंगल सीटर के एक बाजू पर मेरी बेल्ट के हुक में तेरे सब्ज दुपट्टे का एक कोना अड़ा हुआ है। बिस्तर की चादर और तकिए एक दूजे से गुत्थम गुत्था होकर गहरी नींद के थल में धसे हुए हैं। उन्हें जाने से पहले जो मंजर जामिद किया था उसमें कमरे का दरवाजा खोल के मैं भी शामिल हुआ खड़ा हूं। काश अचानक धम से आकर तू इस जमे हुए मंजर को अपनी आहट की हिद्दत की आस तो दे। मुझसे बाहर मुझ में शामिल इस मंजर का कोई हिस्सा सांस तो ले। मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हम्म बिनासर।

और जो चीज तुमको दी गई है वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और इसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाली है, क्या तुम समझते नहीं?